0: पंकज उदास
1: और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत आपको सुनाया गया फिल्म मोहरा में से निकाल कर। म्यूजिक डायरेक्टर है वीजू शाह का कल्याण जी का बेटा है। आज वो कल्याण जी आनंद जो दो हैं दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कल्याण जी का बेटा है। वीजू शाह के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी गीत रखे हैं। तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत है इस तरह से।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुन हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइए निकती इंद्रियन सस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वे पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरी वीराम रूना लैला, रूना लैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से, काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तीन के फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथियाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुएट चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहेंगे रख प्लेयर में रखे माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: इन्हें दिल को दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन ससन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं, बहरहाल नेकतीन सेफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिनियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में, हमने चला दी। शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फौन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते हैं, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं निगहतिन एन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फॉन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है? कंचन और मैथि मुकेश नीख दिन फैफ से ही तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फोर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।

अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाएं। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाकई आपने सुने, बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

चौहान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रफी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हाथ रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्तक 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार।

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है, क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं? अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे, जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं जी नहीं, सोनू निगम नहीं, कुमार सानू, कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने और प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियाँ लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिलके सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे, बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाई हुई गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी हाँ, समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं, आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं, बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की हैं, लेकिन मैं दिल से तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ करने से चुकता नहीं है। तारीफ ही तारीफ, लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर से तारीफ की तारीफ, तारीफ ही तारीफ।

बस आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

वाह क्या बात है, अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्में खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

जानम देख लो दूरियां। और नारायण जी आपको सुनाई ये शानदार गीत फिल्म वीर जारा में से निकाल कर हमने पेश किए हैं। इसका म्यूजिक डायरेक्टर संजीव कोहली, लेकिन ये गाने जो है इस फिल्म का, ये इस फिल्म का के गाने कभी मदन मोहन जी ने बजाए थे। तो मदन मोहन जी संजीव कोहली का पिता है, जी हाँ, यानी बाप मदन मोहन, बेटा संजीव कोहली। तो बरसों बाद मदन मोहन के ना होने पर संजीव कोहली ने वही गाने के नए धुनों में और नए तोड़ मरोड़ के नए साज में सुनाए हैं आपको। इसका एक पूरा सीडी है किस तरह से गाना संजीव कोहली ने बनाकर, अपने पिता का गाना बनाकर और नए फिल्म में डालने, कभी आपको सुना देंगे ज़रूर। चलिए

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहां मिले हैं। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए मित्रों। और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोला था है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी है, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, उसे लुकू सहंगा दो दू नंगायू। तो ऐसे मुर्गियाँ भी, ऐसे बकरियाँ भी, सभी लोग को पीड़ा होती है मित्रों। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो और ना सिर्फ बोलते रहो, हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवेल यू ना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। हम दूसरे के काहे भलाई करी, पहले वापन करी मित्रों, ठीक है, करते रहो जैसे जिए, चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे।

मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों, और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रोवी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानी मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिलीप स्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त, बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करब, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रह ली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे, ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है। मित्रों, इस भजन को सुनना।

मित्रों कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा जाति पार्टी सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर, क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच्चे किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू तो प्रॉब्लम, बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दशीफा वो लोग मित्रों, क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है, कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट है एग्जैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी कने नित खबून सैन, जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुक्ति करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। है? तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा मीने हो फरकीफें, तब मरो लेके अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो पता ना है, भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाएगी तुम्हार कुछ थोड़ा लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कर्म फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे? हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइ तुकोम्स ऑफ यू फॉन्ग द लीफ दैट बेन येल्फ, और ना कोई और। सत्य से मित्रों ध्यान करना, हम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं। तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे, और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हाँ, उसमें क्या बात है मित्रों। तो गलत काम मत करिए, नगो दूल और लोसानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप दे ली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की का है बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लिलाव लाव चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना, हम क्या बोलते हैं, किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान हैम ऑफ दान हार, यू लव खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहाँ पहुंच लो है। आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है। ऊ जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ओके हम बोलत हैं। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जाइयो है, रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कान का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार, इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि ये उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिली है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता

बस बनो ना मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे। और का चाहिए आपको है? इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको मित्रों? हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे क्या होगा। मित्रों इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदेव भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू।

मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार करत है, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेत है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबोकी कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं। भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई चल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

की बातें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें वो सिखाती थी तुम्हें। बेटा आओ आओ, आप सब मिलके वो गाना गाए जो तुम हमेशा अपनी माँ के साथ गाते थे। गाओगे ना? आओ गाए।

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

एक बार फिर यहाँ से आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। इस बार यहाँ से आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ करने को जा रही हूँ। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्त जनों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरे नमस्कार। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। सभी को हार्दिक से स्वागत है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में। आरंभ को करने जा रही हूँ Den Haag Leskeveen 4 Park से। Den Haag Leskeveen 4 Park से बाउ एंड ऑनरहाउस बदरेव, बाउ एंड ऑनरहाउस बदरेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देवनारायण जी, इनके तरफ से हम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा।

जय जय हो। उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है। जो शुभ कार्य आज कर सकते हो, जो शुभ कार्य आप आज कर सकते हैं, उसे कल पर ना छोड़ो। कौन जाने कल कब आएगा, आए भी तो ना जाने उस समय परिस्थितियाँ कैसी होगा, उस समय परिस्थितियाँ कैसे होगा। तो जो आज करना है तो अभी कर लो, जो अभी करना है तो अभी आज कर लो। पेश किया गया है दनाखलाइस का फिल फोर पार्क से ऑनर हाउस बद्रेव। इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से हनुमान चालीसा के साथ आज स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। दनाखलाइस का फेम फोर पार्क से इस बार है आनंद अर्जुन शर्मा खरोथ हांदल बेफे के साथ सुनेंगे हम गणेश जी की आरती।

गणेश जी की सुंदर सा भजन यहाँ से हमने श्रवण की है, पेश किया गया है दनहा खलैस कफेन फोर पार्क से आनंद अंजु शर्मा खरोधान बेफी के तरफ से। दनहाग से श्रीमती लन बाबू राम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे एक बार फिर सुंदर सा गणेश भजन। बेहतरीन कल के लिए, बेहतरीन कल के लिए आज को बेहतर बनाना पड़ेगा।

अति सुंदर, अति सुंदर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपके तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। पेश किया गया देन हाँ के रहने वाली श्रीमती लेन बाबू राम जी की तरफ से। देन आखलास के फेन फोर पार्क से इस बार है बाव एंड ओनर हाउस बद्रेफ। बाव एंड ओनर हाउस बद्रेफ इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से सुनेंगे

सुंदर गणेश भजन आपके लिए पेश किया जाता है आपी का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से हम यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार है, शब्द शब्द शब्द ऐसा कहो जिसमें उपजे प्यार। पेश किया गया है दनाखलास कफेन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त देव नारायण के तरफ से हमने श्रवण की है। आपको लेकर चलते हैं दनहाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए सभी को।

सुंदर अति सुंदर, चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। पेश किया गया है दनाख से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से, सभी को एक शुभ दिवस, मंगलमय जीवन, मंगलमय जीवन और मंगलमय दिवस पेश कर रही है। सुरीनाम लिफोर्नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक्सीन, श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात के।

0: Fronteer.
1: सुंदर अति सुंदर पेश किया गया है श्री नाम अर्ली फॉर नोमैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष महावीर श्री पंडित सुभाष महावीर के तरफ से खूबसूरत दिवस में सुप्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी को कह रहा है। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नए उम्मीदों के साथ जागना। देना मका इस रात नंबर 6 से फाहोन हिंदू बास स्कूल फरेनखिंग अलखमेन हिंदू ऑंडरवेस के तरफ से

के दाता गयाधन श्री गणेश श्री गणेश आप सभी को गणेश जी की कृपा से हर दिन फलदायक हो हम सभी का पेश किया गया दनहाखमा का इसरात नंबर 6 से हिंदू बासो स्कूल फाहुन फरेनखेन अलखमेन हिंदू ऑनरवेस नीदरलैंड के तरफ से आगे चलते हैं सुनने के लिए हेकनुटरस्ट्रैट देना हेकनुटरस्ट्रैट नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांगुरबिन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ

अति सुंदर, एक बार फिर अति सुंदर, अति सुंदर। प्रथम पूज्य भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से आपका हम सबका दिन सुखद में और मंगल में रहे। पेश किया गया है नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांदगुरबिन के निर्देश में है। आपको लेकर चलते हैं इस बार रोटरडम हॉगवलीट टेक्सासवेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात और एक शुभमय दिवस, एक शुभमय जीवन हम सबको अवश्य इनके लिए प्रार्थना करता है।

मंत्र पुष्पांजलि यहाँ से हमने श्रवण की है। हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशा है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं पर जागने पर मिलता है। पेश किया गया है रोटरडैम होपफुली टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से और रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्केटस्ट्रैट से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महाथम जी की तरफ से ये सुंदर सा पुष्पांजलि मंत्र पेश किया गया आपके लिए। फाहोन रेडियो की स्टाफ डायरेक्टर

हाँ हाँ जाने जाने हनुमान जी। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई उम्मीदों के साथ उठना जागना और इसके बाद तो गणेश जी की कृपा हर दिन हम सब पर फलदायक दे। पेश किया गया फोन रेडियो की डायरेक्टर स्टाफ पर्सनल के तरफ से और सभी फेरावेलकर के तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते आपके सेवा में पेश किया गया है। सभी भक्त प्राणियों के वास्ते सभी सुनने वालों के वास्ते भजन माला कार्यक्रम।

मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको यहाँ से एक बार फिर स्वागत कहती हूँ। 8:08 गुजर गया, ये भी एक कमाल की बात है ना। अक्सर ऐसा होता है कि 9:09 गुजर जाता है, 10:10 या 10 मिनट बाकी है, 10 बजने में इस वक्त है, 8:08 गुजर गया। कभी कभी ऐसा ध्यान पे आ जाता है कि दैट खून सो पैरेलल लूप एंड दैट सो फाइन ओम ओम ओम ओम आंत खेफन। एक बार फिर यहाँ से शांता जी की प्यार भरे नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और कहती है कि जिंदगी दो पल की है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सुनने वालों, कि जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो मेरे दोस्तों। वक्त वक्त की बात है, यहाँ पर वक्त वक्त की बात है सब, इसलिए कल को छोड़ो और आज में इस पल में जी लो।

जाना तुम्हारे प्यार में क्या क्या ना बन गया है, और इस दिल की दास्तां बड़ी अजीब होती है दोस्तों, इस दिल की दास्तां बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है, आपको पता है ना। और किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी बड़ी बड़ी तकलीफ होता है।

खो गया होता है। और कहते कि तेरे दिल में मेरी सांसों का पनाह मिल जाए, तेरे दिल में मेरी सांसों का पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है। जब से आ गए हैं बस चांद पूरा है और अब पूरे हैं हम। देखो ना कितने अच्छे बात है।

पुकार रहे कि आ जा रे सुन ले मेरी पायलों की झनकार। और कहते हैं कि तुम, हाँ तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी और दिलों में जान ना रहेगी। क्या कहे क्या गुजरी इस दल पर, जिंदा तो रहेंगे पर जिंदगी ना रहेगी। पूछो

आपसे यहाँ से बता दे, इतला कर दे और जानकारी आपको दे दे कि ह्यूलक्स फरियारदाख। जी हाँ, ह्यूलक्स फरियारदाख भी हम मनाते हैं। ऐसा ना है कि सिर्फ जन्मदिन हम मनाते हैं, पर ह्यूलक्स फरियारदाख शादी के एक बरस, दो बरस, तीन बरस, 50 बरस, 60, 70, 80 साल तक जो अपने साथ में रहते हैं उनका भी एक नाम होता है। जैसे एन ईयर पे, एक साल पे अस यू ह्यूलक एन ईयर इन तक इस वर्तत कातून खनूम, द्वे ईयर वर्तत लेर खनूम, द्री ईयर वर्त तारव खनूम, फिर ईयर वस, 5 ईयर हौत, 6 ईयर ऐसर, 7 ईयर 7 ईयर ह्यूलक वर्त कोपर खनूम, 8 ईयर ब्रॉन्स, 9 ईयर फाइनेंस, 10 ईयर टेन। हाँ हाँ, वह गाँ नोग दोर, 11 ईयर इस कोराल, 12 ईयर सैद, 13 ईयर इस कंत, 14 ईयर ह्यूलक इस इफोर, 15 ईयर ह्यूलक इस क्रिस्टल, 12 ईयर ह्यूलक इस पोर्सलेन, 25 इस सिल्वर, 30 इस पारल, 35 रोबेन, 40-jarige ह्यूलक लीफ्टेड इस मरग, 45 इस वर्गुल्ड, 50 jaar samen zijn, dat is goud. 55 jaar samen zijn, orchidee. 60 jaar samen zijn, huwelijk leven, dat wordt dan diamant genoemd. En 65 jaar samen zijn, briljant. En dan heb je 70 jaar, die mensen die nog samen zijn, dat is dan platina. En dan heb je ook nog 75 jaar samen zijn, dat is albast. En 80 jaar op een 80-jarige huwelijk, dat is eik. Dus u hebt het gehoord, mijn lieve mensen. Dan weet u dat als u 10 jaar getrouwd bent, dan dat is uw huwelijk 10. 40 jaar samen zijn, dat is smaragd. 7 jaar samen zijn, dat is koper. 15 jaar samen zijn, kristal. Isi ke saat, mange ke saat.

क्या खूब फरमा दिए है मेरे हम सब के मोहम्मद रफ़ी जी ने। आज के कलेक्सी आपके लिए हम शामिल की है फिल्म ससुराल से दिल अपना अप्रीत पराए, फिल्म भाभी नया दौर और राम और शाम से। इन फिल्मों से आज आपके लिए मज़ेदार गीत चुनकर और पेश की गई है।

0: और ये गीत फिल्म बाबुल से सुने हैं हम, नहीं बाबुल नहीं बल्कि भाभी। बहुत सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया गया है इस वक्त के लिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, 9 का वक्त है। इसका मतलब है यहाँ से मुझे विज्ञापन चलाना है, और हर बुधवार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेगा हमारा पूज्य पंडित श्री पंडित राजकुमार महातम जी अपने मुखारबिन से हमको सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। उससे पहले विज्ञापन हम श्रवण कर ले।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België reizen. Live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal. Dag

0: इंतज़ार जिनका था वो आ गया है। तो यहाँ बहुत प्यार के साथ हम सभी मिलकर श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को हार्दिक से स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आपको स्वागत है, नमस्कार हो, और आप आकाश में हो।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायिक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नम संभवाय च मयूभवाय च नम शंकराय च मस्करा च स्यूतराय च मुक्षुक्षुरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर था मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है धर्म प्रचार करने के लिए। हम आप कितना ले रहे थे हर बुध की तरह आज भी संता जी ने रेडियो फोन को माध्यम से हमें आप कितने अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले भगवान का अनुकंपा कृपा हुआ जा करके आपके बीच में मैं कुछ ना कुछ धर्म संदेश आप तक पहुंचा सकूंगा। तो आकाशवाणी के सुनने पे हमें आपको भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। हम वहां भी जानते हैं ना हमारा आपका प्रेम परमात्मा के प्रति अटूट और असीम बना रहे। भाग के उदार के लिए और उसे ऊपर उठाने के लिए ईश्वर स्वयं भक्त के स्तर तक उतर आता है। उसे ज्ञान रहता है कि उसके भाग को क्या चाहिए और वो सब उसे कब और कितनी मात्रा में दिया जाए। मांगो नहीं, आकाशवाणी के सुनने वाले मांगो नहीं, यदि तुम मांगते हो जाओगे तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्या भगवान उस सबरी के पास कितनी, क्या परमात्मा जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, कौन सबरी माँ कभी कुछ नहीं मांगा नहीं पहुंचा, क्या उन्होंने जटाओ को जिसने मरते समय भी कुछ नहीं मांगा अमरतत प्रदान नहीं की। इस प्रकार यद्यपि दशरथ ये चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार राम के हाथों हो और उन्होंने राम से ये मांगा भी, किंतु उन्होंने दशरथ की अंतिम संस्कार ना कर जटाओ की अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। इसका कारण यही था कि जटाओ ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यदि ईश्वर से हमारा बाप का यदि ईश्वर से तुम्हारा ये प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपके मांगता हूँ आप मुझे प्राप्त हो। किस प्रकार महाभारत को ले जाते आकाशवाणी के सुनने वाले अर्जुन पहुंचे, कौन दुर्योधन, और अर्जुन पहुंचे कृष्ण भगवान के पास। वहां पर कृष्ण भगवान लेटे थे ना, और अर्जुन जा यानी दुर्योधन जाके प्रथम पहले उनके सिर के उगे सिर के उगे सिर के वहां पर खड़े थे। बिल में पहुंचे अर्जुन कृष्ण भगवान को चरण के आगे। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन क्या चाहिए मांग लो। दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं बहुत विलंब से यानी मैं बहुत जल्दी आया। अर्जुन तो विलंब से आए हैं क्यों उनसे आप बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कहे हे दुर्योधन अर्जुन हमारे चरण के आगे थे पहले उनको मैं देखा कहने का थे अगर हम आप कुछ प्राप्त करना है तो हमें कुछ झुकना है और वहां पर क्या। कृष्ण भगवान ने कहा मांग लो। तो दुर्योधन ने क्या सेना बहुत ज्यादा मांगा और वहां पर कृष्ण भगवान कहे अर्जुन से। अर्जुन कहे प्रभु मैं आपके मांगता हूँ आप हमारे पास रहो। कौन कहे सेना जो है बहुत कम है। कृष्ण भगवान के अर्जुन से लेकिन अर्जुन कहे प्रभु आपके मैं मांगता हूँ। कहने के तहत है परमात्मा हमारे साथ जो है तो हमारे मंगलमय होगा भगवान कृपा कृपा होगा आकाशवाणी के सुनने वाले। और भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना है भगवान जानते हैं हमें क्या कमी है। हम उपमा देते हैं जैसे छोटा से पौधा बड़ा कोमल होता है ना उसकी रक्षा के लिए बादल पानी बरसता है ना उसके रक्षा के लिए बादल पानी बरसाते हैं और उसके पोषण करते हैं। पौधा वर्ष के लिए बादल के पास नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार एक शिशु में तो इतनी शक्ति ही नहीं होती कि दूध पीने के लिए खिसकर वो माँ के पास जाए किंतु माँ उसके पास जाती है दूध पिलाती है और उसका पोषण तथा रक्षा करती है। इसी प्रकार परमात्मा भगवान भक्त के पास आता है उसकी सभी इच्छाओं पूर्ण करता और भक्त जो चाहता है उसे देता है। इन सभी प्रार्थनाओं में सबसे आवश्यकता तत्व है भक्त। भक्त का प्रेम ये प्रेम नाम प्रसूत है। यदि प्रेम नाम प्रसूत है तो ईश्वर प्रेम प्रसूत है। इसलिए कहा गया है आकाशवाणी के सुनने वालों कि परमात्मा तत्व के लिए प्रमुख आधार भक्त का सच्चा प्रेम है। इस प्रेम के लिए नाम सुमरण आवश्यकता है। नाम सुमरण भी सब सार्थक है जब वो तन्मय से किया जाए। अतः नाम सुमरण अपने में स्वयं भगवान पर अपने में स्वयं भावना प्रधान है और इस सब के लिए भक्त के दृष्टि इच्छा शक्ति आवश्यकता है। श्री भागवत गीता कहती है कि तुम अमृत पुत्र हो। अमृत पुत्र के क्या अर्थ है आकाशवाणी के सुनने वाले। कोई भी व्यक्ति अमर पुत्र कब बन जाता है जो भक् क्षेत्र और क्षेत्रीय के अंतर को भली भांति समझ लेता है वो इस पद का अधिकारी है। हमें इस तत् पर तनिक गहराई से विचार करना चाहिए कि भौतिक शरीर तो इस पे ध्यान करना ये भौतिक शरीर तो मल मूत्र से भरा है ये आत्मा के लिए मात्र एक वाहन है भवसागर पार करने के लिए। ये शरीर हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम इस भौतिक शरीर की आवश्यकता प्रकृति का पता लगाओगे तो इसके प्रति तुम्हारे अपने आप कम हो जाएंगे। फिर भी तुम अपने उदासीन भी नहीं कर सकते। ये साधन है जो हमें अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्रदान किया गया है अतः इसलिए देख रेख भी अवश्य है। साथ ही तुम्हें ही वास्तविकता से भी परिचित होना चाहिए कि ये साधन है साधन नहीं है। जब तुम इस क्षेत्र के विषय में और खोज करोगे तो तुम्हें इस शरीर की आवश्यकता तथा दोनों प्रकार की प्रकृति का ज्ञान होगा। आकाशवाणी के श्रोतालु, जो प्रेम ईश्वर को समर्पित किया जाता है निस्वार्थ होना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करने के पूर्व तुम्हें अपने से प्रेम करना चाहिए। स्वयं से प्रेम करने के उपरांत तुम्हें समाज से और फिर संपूर्ण विश्व से प्रेम करना चाहिए। यदि तुम्हारे प्रेम निस्वार्थ नहीं है तो तुम्हें विश्व से प्रेम नहीं कर सकते, और यदि विश्व से प्रेम नहीं कर सकते तो परमात्मा तुमसे बहुत दूर रहेगा। तुम उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? इसलिए पहले जगत से प्रेम करो और आगे बढ़कर जगदीश्वर से, जहाँ प्रेम है वही घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ घृणा का भाव है प्रेम मिलेगा। केवल दो वस्तु है, प्रेम और घृणा। घृणा होगी तो तुम्हारे अहंकार बढ़ेगा, प्रेम तुम्हें करना और कृपा प्रदान करता है। भगवान की इस सृष्टि में मानव का स्थान सबसे ऊंचा है। वही बात रामायण में प्रभु राम लक्ष्मण से कहे हैं, सम प्रिय सम उपजा सबसे अधिक मनुष्य मोहे भावा। वही बात प्रभु राम कहे लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, सब जो मैंने बनाए लेकिन मानस में बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारा प्रेम समाज और विश्व के प्रति विकास हो, इसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए। शिशु का प्रेम सबसे पहले अपनी माता से, फिर पिता से, और फिर परिवार के अन्य सज्जनों से प्रेम करते हैं। प्रेम का विस्तार होता है तो वह अपने मित्र से प्रेम करता है, विवाह के पश्चात वो अपनी पत्नी से, और तत्पश्चात अपने संतानों से प्रेम करता है। ईश्वर ने परिवार का स्वरूप ही इसे प्रदान किया है ताकि मनुष्य का प्रेम तक सीमित ना रहकर और आगे बढ़े, धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को अपने प्रसिद्ध में ले आओ। आकाशवाणी के सुनने वालों, हमारे प्रेम विश्वरूपो, प्रेम स्वरूपो, इस रूप में एक स्वयं ईश्वर की पूजा है। प्रेम और सेवा ये सर्वव्यापी है। केवल हरि नाम संकीर्तन द्वारा ही व्यक्ति अपने प्रेम के सीमा का विस्तार कर सकता है। प्रभु नाम के सुमरण द्वारा ही हमारा हृदय उदार बन सकता। भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, बात आप जानते हैं। आकाशवाणी के सुनने वालों, हम आप ठीक से जानते हैं, साथ कोई साथ चलेगा नहीं। पंछी उड़ गए अकेला, सब साथी संगी छूट गए मेला। फिर से बात दोहरा रहा आकाशवाणी के सुनने वाले, साथ चलेगा ना कोई तेरा, पंछी उड़ गए अकेला, साथी संग छूट गए सब मेला। श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। आकाशवाणी के सुना युवाने द्वारा अपना प्रवचन विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् हरि ओम शांति।

मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से मिलकर हम श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी की मुखारबीन से सुंदर सा कथा, और आखिरी में जो दोहा पंडित जी ने सुनाए उसमें कितनी सच्चाई है और कितने आनंद में पंडित जी सुनाए अपनी मुखारबीन से। इसे हम समझे और अपने जीवन में प्रयोग करें तो हम जरूर से आनंद में रहेंगे। पावन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से, सभी सुनने वालों के तरफ से पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है, जो अपना मूल्य वक्त निकाल के आए और हम सबके सेवा की है। पंडित जी आपको धन्यवाद, नमस्कार, एक शुभ दिन होवे।

ये एक सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है और फिल्म भाभी से निकाल दिया गया आपके लिए सदाबहार गीत आपके लिए पेश हो रहा है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से द एनख एख्त जो करोड़ों लोग सुनते हैं इंटरनेट के जरिए से

आँखों से चूम लूँ तू भी। हाँ, ये एक नया नया नया गीत आपके लिए पेश हो रहा है, या न्यू सॉन्ग फन 2026 के। और इसको यहाँ पे भी है, न्यू सॉन्ग, न्यू हिंदी सॉन्ग, धड़कन में हो तुम।

फिल्म गद्दार से आपके लिए पेश हुआ अज्ञानता। मेरे दोस्तों, अज्ञानता सबसे बड़ी चुनौती है। इस दलदल में फंसकर मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो अज्ञानता में मत रहो। अपने आप को कोशिश करो, प्रकाश करो। फॉर दैट यू इट्स आउटब्रेक इज इट मिस्किन verstandig om jezelf af te vragen hoe het klinkt als iemand zoiets tegen jou zou zeggen en of je dat leuk zou vinden. Wijsheid is niet alles weten, maar weten wanneer je moet luisteren, wanneer je mag loslaten en wanneer je gewoon jezelf mag zijn.

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांग्निक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरी ग्रीन कुमार यानू एंड अलका यागनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

0: Reizen 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar. Van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Taxfree, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaatsen. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal. Dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
2: Digitale radio, Faro.fm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Kalana jane ooch neech, kalana jane jaat, sources die baantha DJ, humko apni aasirwaadi, tamam radio fahon ki sunne walo ko, hamara ram ram namaskar, pyaar bhari adam sasyakal. Johnny number one hai hamara naam, aaj ka desh videsh ke samachar ko sunana hai hamara kaam, yehi hai hamara mohabbat bhari, aur pyaar ki paigam. Aaj bhi aaj. प्रोग्राम ब्लॉक के रेडियो फोन के माध्यम से देश और विदेश के समाचार को हम बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ेंगे और सब सब करेंगे हमारे यारों, हमारे दोस्तों। और इसी चून से हम आपको लेकर पहले चलते हैं भैया फ्लिक फेल की ओर। तो बोले जॉनी बतिया कैसे है, कैसे है बतिया? तो बतिया ऐसे है नानी, बतिया ऐसे है कि सूरीनाम में भैया हम लोग जाने ला फ्लिक तो कई गो है नवाखमस बनाई से संदरई तो सब कोई जाने है, सौरखन होप के जानो, निकेरी के जानो है और तो बाकी और कुछ है ना है। लेकिन सूरीनाम में बहुत जबर समंद्रक्ष के इलिखाल इलिखाल फ्लिक्त फैलद हुआ बनावे है। जब पकड़ा जाए भैया तो सब जा है बम वम दाग ओके कुछ दाग ओके और फ्लिक फैलतो हमें भारी भारी होल कर दे कि जो ने अप्लेन हुआ ना उतर पाई। मौसी बकी प्लेन वहां उतरे से पहले गड़ावन दृक्ष जलरवन फिर जाए के भर दे भैया। लेकिन बात अब देख फिर एगो मिलल है गोलियार्थ खबित में और है पारा में डिस्ट्रिक्ट पारा में फिनो एगो एलिखाल लैंडिंग्स बान मिलल है सूरीनाम देश के बातचीत हुए है और मिलल है 4 तारीख अक्टूबर में। तो लैंडिंग्स बान के साथे साथ हुआ पे बोलेगा फ्लिक टेक के बांती के स्पोर भी मिलल है कि हुआ प्लेन उतरान है, फ्लिक टेक उतरान है और ब्रांस्टोफ के बारिल पाई से जेमा तेलवन वाला रहा दोस्त तेल के बारिल भी मिलल है और बताए गए एगो तुई मोरख मोतरख तुई मोतोरख फ्लिक तक वहां जर के भसम हो गया रहा दस एगो प्लेन पाई से जो जर गया रहा दस वहां पे मलियन सब उतर गया भैया हो सके प्लेन वहां में कुछ भैला सबन स्पोर बचावे खनो में आग लगाई जरा दे दृक्षवा उसे 100 गिना और महंगा है जो सबन फरफूर करी से। तो यहां बताए गए नार्कोटिका ब्रिखांड जो नाम में है इन लिखिंग दिंग्स अरस्ताद सी टीम एकर बारे में गए ले सब ओरिएंटेर करी से भैया और बताई से कि कौन ची हुआ मिलल है वेख दिल ता लैंडिंग्स बान पे मिलल है और बोले खबरें स्प्रेड ओवर द लेंथ लॉन्ग मेयर फाटन एंड जेरिकेंस भी रहा और बोले इन द ओम खीव वेट ओक आइड खबरान द तुई मोटोर ख फ्लिक्टेड भी सबन पाई से और बताई गई है का फ्रे वेल सीकर आन खून हुए दैट इट ओम ड्रग फ्लिक्टेड खात ओम मिसीना है ड्रग फ्लिक्टेड के बारे में एन ओवर लेग में द ओएम वो सब बारी लाने गए बाकी नतीलक एक को आदमी ना पकड़ाने भैया द फोंस कम एंकले दाग ना दैट Jennifer Simon tijdens haar jaarrede voor het dienstjaar 2027 op woensdag 30 september aandacht vroeg voor de aanwezigheid van kleine vliegtuigen in het achterland. Te bolle het staatshoofd gaf aan dat er meer informatie nodig is over wat zich in het binnenland afspeelt van de Suriname. Bon, Simons bolle raar bolle te lukken, jij binnenland me ben jij, denk ik, kijk hoe illegale vliegtuigen, hoe aan pe oere he. To ye baat he, hamari pyare pyare Suriname ke janta. To okar baat me dosto, hum tari jaila. और आगे को अपना प्रोग्राम को लेके और बोले बंक जो सूरीनामे में भैया तू जइयो जइयो सूरीनाम के बंक में और बोले हुआ पे जइयो पैसा स्टोर करे और या दुकानदार बाटे या कहीं पे पैसा पठाइयो या सौदा में जब बहुत पूछताछ हुआ पे बंक करे है तो जनता हुआ हैरान हुई गए हमार पैसा है और तू कहे इतना पूछताछ तू करे है। यहाँ बताई से फील मैं सूरीनाम हर कैनन हर कफूल बोले तोर पैसा है बोले तू पैसा मांगे पर फैमिली बैतलात में देवे ले फरान सिर बोले हम मांगेला सौदा कीने और बोले
2: geleid en dan begint het vragenuurtje bij de bank. Tap surukare bank wapu cheke tu paiswa kahan se pahile hai, kahan tu pathaiye, ka kariye. To admi bahut hairan ekar bare mein Suriname ba, aur upar se bank wapu chega ki kahe ke tu paiswa mange bhare, wherefore is the bataling, aur ke hua onfang kari tu I paiswa bare mein to ke factuur ba. De sommige klanten zuchten, anderen worden boos. Het is toch mijn geld, is een veelgehoorde reactie. En ergens is die reactie begrijpelijk, maar er is ook een andere kant die vaak onderbelicht blijven mensen. Banken ke verplichte Suriname, verplichte Usapke, kabule jane ke, verplichte jane ke ki klantua paisua kaha paise, drugs ke paisa na hoi bhaiya tu jane witwas admi bahu jabar kare. Abbe hem nieuws me bataili hai ki vliegtuig mila lhega aur o landingsbaan mila usap drugs unka paisuan kaha hai, kani ohi paisua na tu mange pathawe. En dan mag niet, zowen ke khali mag heel illegale na legale paisa, pathawe thawe ke ohik mare, banke reglemente, dat ze dit gaat ondervragen mensen. Sommige klanten zuchten en anderen worden natuurlijk boos, maar de banken zijn wettelijk verplicht om alles te weten. 19 november 2022 mee, de wet ter voorkomen en bestrijding van de money laundering in de terrorisme financiering, kortweg WMTF, deze wetvervanging verving oudere regels en verplicht banken tot cliëntenonderzoek. 2024 augustus mee wijzigd bij hem je beter te sluiten met de internationale standaarden. Dat betekent niet dat de bank u wantrouwt. Het betekent dat de bank moet kunnen uitleggen waarom een transactie plaatsvindt, zeker bij grote bedragen of betaling naar het buitenland. Want hoe heb je het mee bij drugs dealer loon miljonair bij ja, je sub koei je paisa mag patawake de Ada Den Haag ze van drugs dealer ja killen wat baan. Maar daarom is de regels dat ze precies willen weten van waar komt de geld. Neem een eenvoudig voorbeeld. Jullie collega kiet op 5 jaar Amerikaan dala. Bolle naar een bedrijf het buitenland te mangen pathawe. Bolle de bank ziet het bedrag, maar niet automatisch het doel. Bolle bank wat khali bedrag hoa deke. Bolle na deke to paiso wat keke pathawe he. Als u zegt ik koop goederen voor mijn winkel, dan is dat een begin. Ki hem dukaan ke sauda mangela, te bolle u begin he. Maar bolle bankwa bolle ook een factuur dekha, ook om een factuur vragen. Niet omdat u iets fout doet, maar omdat de bank moet kunnen vaststellen dat de transactie past bij wat zij van u weet. To i banken waren we bij elektrische geldovermaking vanaf $1000 tot €1000. Ja, wat we de wet kent een specifieke regel voor incidentiële buitenlandse elektronische geldovermaking van $1000 tot €1000. Daarboven moet de bank extra informatie verzamelen, maar ook onder dat bedrag mag de bank vragen stellen als dat aanleiding voor is. Het bedrag is niet de enige criterium. To bhaiya bataye gaye hai to bank se mange overmaak kare $1000 ya €1000 ohu bank wa to se puchega kaise ba. Internationaal zijn er afspraken gemaakt binnen de financiële Action Task Force. Bullet 2 aanbevelingen zijn belangrijk mensen. Recommendation 10 over cliëntenonderzoek en Recommendation 16 over transparantie bij de betalingen. Februari 2025 met bullet 10 aangepaste zoals de laagrisico klanten voor eenvoudig onderzoek mogelijk is in juni 2025 met 16 aangescherpt om internationale betalingen veiliger en transparanter te maken. Deze herziende standaard moet uiterlijk 2030 zijn uitgevoerd. Tojenta ham Janil gussa hai madrug zilarwan ke bahut paisa bhaiya tulon jano kon kon auto chalave hai kai kai machine ghare dharal hai 10 10 auto anamiya kaam dhanna na kare hai kaliya bhata bechata bazar mein ek baris baad auto bechik shuru kari che to so jo paisa kahan se aaye bhaiya bhata bech एक तो ऑटोबद्रेव नकल पाइए ना बोले सब ऑटोबद्रेव के भांटा बेच के तू ना 1 मिलियन जेब भी मिले के घूमिए डॉलर के बांचित है और तू मंगे बोली हम जाए नीदरलैंड में नहीं यूरोप में जाए को घर की ने तो 1 मिलियन वहाँ पैसों तू धल्ले रही है वंदा कहीं ही इन नीदरलैंड नहीं कोप ऑफ द यूएस मनीर वन दैट इज विट वॉसे एंड फॉर द विट वॉसे विल इज ऑल स्वीट मेंशन दैट विल गिव डायलॉग आंखें अब देखो भैया और आगे हम जाई हैं जाए ऑटोमोबिल बस कोटन एन आन खरीदन दो रोफर्स की तरह अफ्लोक्त ऑटो एगो ऑटोमोबिल भैया बस कोटन ओके सवन दागी से ओके दागी से चोरवन दागी से आन और बसकोतन एन आन खरीदन दो रोफर्स हिस की तरह ऑफ द फ्लुक्त ऑटो देख चकल्लत भैया और एक हम फेसबुक पे तू देख सकेगा 45 यार के ऑटोमोबिल से सोमार के संझा के बातचीत हुए हैं और रहेगा अन अने पेंगल स्ट्रात में सर नाम में खरेख खसकोतन अपन ऑटो एगो ऑटो को पर दागी से मेर खवापन द ओवर फॉलर्स की यहाँ बताए भैया और बतावे मौसी ना दस है हम हारन बसकोतन अख्तर फलक द हेत आन खरीदन दी द्री खमास कर द मानन स्लूखन फॉर फॉकस ऑफ फ्लुक्त हुन डोंकर ग्रीस इट यू टू फिच वेल लेटर फलाटन आंगेट्रोफन दिस पहले चोरवन दागी से तो हुआ पे तो ऑटो वाला अने मिया दागी से ब्लैक एगो इंस्पेक्टर रहा स्कोटवा की सब दागे रहा मैं जो स्कोटवा जाए क्योंकि दागे लगल तो चोरवन भग गए हैं यहां बताएंगे पुलिस इंस्पेक्टर इज दी अनवेतत योता स्टारलेट फरेस और खन होप से उजात रहा मारत रहता में मैं कोंचियो मैं धल ले रहा भैया वो तो बतिया ना तब तो लुटेरा तो के लूटी से बोले है गए को करिया करिया ते उता फिट्स बोले हम खरेमत टाइट ओके अख्तर फलक करी सो तो हुआ के अब बोले है तुन दे दे एगो क्राइसिंग डॉक्टर शॉप इन एटम स्ट्रैट के फरकेस लगे जो रुकल है उतरा में फिट्सवा जाए के अख्तर हम तो स्टिल स्टैंड ओकर पचवा जाए के रुकल है अब फियास एंड अख्तर आई स्पीकर ही ताके है कि तीन गो खम मस्कर दनमी उतुआ के पीछे अपन बंदूक ले के फिर वापन ले के उतरल है और इतने में कहीं स्पीकर हम उसको उतुआ देख ली से और बोले एन फन हम लॉस्ट नोख अन स्कॉट ऑफ इट ऑटो मेंस और बोले दे दे विश फिया हेड ब्रोंफिस पाथ वेग reden, maar de overvallen zetten achtervolging in. De jekke dagert, dag is het ook door Ibronfis, pas maar ze pat maar ze bhagel he baki is het achtervolgen die ze toch ook de dokter Jovinet monster aan mee, probeerde hij hem af te schudden. De fiets bleef hem achtervolgen en reed zijn auto uiteindelijk van achterna. Volg kerke auto wakke patjoa maar is obole daar op stap die die uit en schoot hij gerek op de Toyota fiets. Otrem is schoot wat utral hij inspecteur wa. Al gerek Toyota op per dag is hij. Op het voertuig werd aan de rechterzijkande door kogels geraakt. Overvallen ontkwamen vervolgens via een Pengelstraat in de richting Brumastraat met z'n geil heen. En Ottawa Pijge, bijna, daar op achterzijde van de Sipenstienland mee. En bolle, de verdachten hadden de auto verlaten. En Nikkerke Bhagge, volgens de politie, overgestapt in een andere voertuig. De Surinaamse politie is onderzocht, bijna, onderzoeker heen. Zeg wat gebaat mee. Maar kiesie Pijge, bijna, onderzoeker heen. चोरवन का है एक ही इतना अंदर सुख करी से एक न तो हुआ में कौन ची रहा ड्रिप्स रहा कि पैसा रहा कि कौन ऐसन चीज रहा नानी कि चोरवन इतना जबन ओके अख्तर फोल्क करी से भैया देखो अब बाउफा का बोले है मिनिस्टर फ्रॉम बैटलांड जाख के बाउफा बोले 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर स्लेक्स इज द स्टॉप सुरिनाम से बॉस इज फेल मेर वन बोले 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर पैसे बोले सरनाम के जंगल में बोले और जबर वार थे बोले इस तू सेकिंग पैसे 20 मिलियन के डॉलर के फॉर नेचर बहुत इन फोल्क minister Melvin Bouffa slecht aan het begin. Suriname wil dat de internationale gemeenschap meer financiële verantwoordelijkheid neemt voor het behoud van zijn bossen, terwijl het land ruimte houdt voor economische ontwikkeling. Ook de gemeenschappen die rond het bos wonen moeten van de financiering profiteren. Tot je ingi jukano rebelo paisos usapke bija in profiteren kareke. Amake bole so karese bahudur ja hai minister beofa kareke pahle de kawo. Te bole jungle hamlo itra kalibul okarban me chahi paisoar heke bole 90% van het Surinaamse grondgebied met bos bedekt te houden. Bova vindt dat een geïndustrialiseerde landen tegenover de inspanning een grote verantwoordelijkheid moet nemen. इतराम पैसा मिले मा पैसा बोले है जुका इंगी चाहे जाए के मक्का बजाई भैया तुलो अपने जाने हैं तोरिया कैसे है तुलो जानो भैया बस चफिर बहुत रुकलूस सुरिनाम देश में वो बस चलावे भैया पतफा वानी का के फिच्च पत पे इन हाल करे है वो एक मारे सन्ना में बड़ा डल लगे फमे हो तो चलावन भाई वन सबन बहुत रुकलूस चलावे है अब देखो बोले यहाँ बतावे हैं रुकलूस रे खतरा Buschauffeur kan gevolgen hebben voor vergunning en chauffeurskaart. De roekeloos Chalaise buschauffeur riskeert kreeg ook een rijbewijsje na jijga. Of bole hega vergunning bij na jijga. Dat kan wanneer de wet daarin voorziet. Bole hega het ministerie Transport Communicatie TCT ke bole he. 5 tarik oktober ke bole usab strengere controle ke liye. Bole hega aanleiding bole usab deke ke chauffeuren verkeer mee bohut roekeloos Chalawe he. Of bole hega via de directoraat transport worden controle samen met de politie en andere betrokken instantie aangescherpt via bolle aangescherpt via to ye sabat bolle hai ministerie van TZT ook vervoersbranche zelf wordt aangesproken bushouders chauffeurs worden opgeroepen mensen to i buschauffeur ke bare mein to lo nitra jor chalawe hai ab dekho ka hone wala hai to hamari janta hamari pyare pyare janta अब देखो भैया तुलों जाने हैं पहले के एक्स मिनिस्टर फान यूसीसी एंड पुलिसी हम ना बोली ला भैया फे यहाँ पे के तहत पे हम बोली ला एक्स मिनिस्टर है एनडीपी के और वो हैगा सेलोस भैया सेलोस के तुलों जानो है तो और ये बड़ी क्रिटिक लेफर करी से हमारी जनता और जो क्रिटिक लेफर करी से और वो लेफर करी से ओकर आतोम पाई के ऊपर भैया यहाँ बताई गए हैं फंडाइक सिलोस बोले आतोम पाई बोले अपने के बलाख्रक करी से बोले वो सोचे हैगा कि वो दे ना ले बा तो मिनिस्टर के बात से का ये खाद नीट करने बपालन फॉर द मिनिस्टर व्हाट है मुदुन Dat is Jennifer, jurist Jennifer van Dijk Silos, bole hè NPS'er. Putini atom paai ke ki apre ke bahut balakhlak kari se. Bole u sochega ki u baas minister ke ka jonu boli hoe ke. Bole wel als voorzitter van de vaste DNA commissie onderwijs. Volgens de jurist is het niet aan het parlementariër om te bepalen wat een minister moet doen. Ja, wat hij gaat, bole sumana yu leki DNA. Bole saai je lekla van DNA, je gaat niet kunnen bepalen wie koontje minister ke mag kareke, koontje ke na mag kareke. Iemand van Dijk, Silos bole zega, moet vooral NPS gaan letten op dit soort zaken. Atom Pai bole hega bole hamme bole vooruitgang na dekha hai onderwijs me bole ladkan bole hega twee terwijl kinderen, studenten, leerkrachten, ouders daarvan dagelijks de gevolgen ondervinden. Bolle, daarom vertrek ik als voorzitter voor de onderwijscommissie, leidde er tot verschillende politieke reactie. To NDP'er bhaiya ego Marshall Oosberg tulo sabko jano ke to bole bas twist de leasing van Atom Pai en stelde dat de NPS'er door die hoever al 20 augustus 2026 tijdens ego huishoudelijke vergadering mee tot voorzitter was benoemd hoever bevestigde benoemingsdatum eveneens in het dankwoord van haar Facebook pagina to jo sto is babaat ab dekho sarmakka ke or hum jai hai na सरमक्का की ओर जाएला हुआ के एसवीएम के पानी गंधा है भैया गंधा है कलर पानी जो उज्जर चाहे ब्राउन हो गए है और एसवीएम के पानी जे तू ना पैसा भरियो भैया तो डायरेक्ट तो के आई के काट देगा बोनस जो सर मक्का के है हमार मौसी लोन हमार नानी लोन बतावे यहां पे खरई में तक प्रॉब्लम हम उस पैसे वाटर आउट द क्रान फॉल्स हैन हीफ्ट वाटर रिकल मातक गंधा है ब्राउन हो गए है बोले फर्ट्रोवन फन कम सिमसिन अंदर है सौलक दुल एंडन सोमख बोने सेकंड डारम खनोसाख तसेन वाटर तक कूपन बोले उपानी बोले हम लोग ना खबर पाला बोले हम लोग के जाय के कीने के परे दुकान में अफकल ओपन वीकेंड में बोले सर मक्का में बोले एस्प्राक में बोनस ओवर द सिचुएशन सुरिनाम से वाटर लेनिंग मस्कपे मार फिंडन दैट स्ट्रक्चरल ऑपरेशन आउटब्लेव्ड बात ये बात है फोटो तो दिखावे भैया क्वारा संग के वाटर लाइनिंग के और मैं क्यों वानी का माई गिरे एन फन बोन फर्टेल कि ओकर सिचुएशन सर मक्का में ओकर जी एरफार करी से बोले मोमेंटेल बोले पानी प्रॉब्लम बस सफा पानी ना गिरे है बोले व्हाट अन मिस इन हेट लैंड हैवन वे हियर इन सर मक्का नीड टू वेल द एचवीएम स्टेशन टेकर क्रीक के बात हुए दोस्तों टरवेल एसवीएम स्टेशन टेकर क्रीक हिल दिख बे इस हैवन वे टेस geen toegang tot goed drinkwater waarom de swakwara sankena bhaiya hega tiger creek ke waarom het hi bijna elke andere week in het land wel de mogelijkheid om gebruik te maken schoon water se lekin tiger creek ke admisser wakka ke na to bole hega bone swap bole hega kwaliteit pani ke bole bepaalde moment pe pani ye na gire daaglos uit hoe handelingen moeilijk te gebruiken bole hega klachten ze van krijgen SWM mee. Volgens hen kregen ze daarbij de toezegging dat maar een oplossing zou worden. Je zou willen gaan zoeken. Maar op dit moment een oplossing naar beneden. Telkens kregen we te horen, ja, het komt goed. We krijgen een oplossing, maar er komt nooit goed. Steeds geen oplossing. Ik maar een jonge Suriname de stap genomen om in de media te verschijnen. Adjoen chief media me verschijnen. Bij de Johnny lage zomaar te roepen. Op vraag zei je, bhaiya. En hem me betalen ke. Tuurlijk ke to kaam he. Ik heb een dierow tank. Ik wil bole, als je komt kijken, is er een grote modderboel. Je ziet overal vuil en zwarte vlekjes, zoveel vuil. Je kunt het niet drinken. Drinken is echt uitgesloten. Dus een mieke duro ten kwam is van waterleiding. Ze vallen we heen. Te hitere voorste drukking. Krijg een toilet met een panier naar Giri Bhaiya. Toen ja, betalen we de aanleiding van de klachten spraak met de dienshoofd SWM Sarmakake. Ook een naam Prichen Sarabjit Singh. Dat is niet helemaal waar. Bolle, ik ben vorige week samen met de minister ook in het veld geweest. Omdat we recent 2 klachten hebben ontvangen. Ik wil ook aangeven dat mensen naar de station kunnen komen om hun klacht door te geven. Telemiana Bissoaskere, bolle verouderlijke leidingnetwerk. Over de oorzaak van de geur zegt de diershoofd ten aanzien van de geur kan ik wel aangeven dat dit soms te maken heeft met de veroudering van de leidingnetwerk. De Sarmakaker meet je klakker is अब बोले पुराना है भैया तो के नवा कर वहां तो पुराना पैसा थोड़ो ली है अब देखो भैया हिया हम जाइला एगो औरत भैया पौड़त रहा भाई पौड़त रहा अनफ्रो सोमर के संजा के गल पौड़े क्लारा क्रिकी में और पौड़त में ऊपर ना आयले भैया बूढ़ के मर गए बिचारी हलफ दरी संजा के बोले सिपाही गले संदराई के और बोले ओकर लेक निकारी से बोले अन दुई प्लुक फॉर अ ब्रांडवेयर इज ना ले लोकेशन फॉरट्रोकन ओम असिस्टेंसिस से फलीनन तबरी दुख के बात है एक और जान गेला पौड़े और पौड़ते में बूढ़ के और बेचारी मर गए है और ये बात है दोस्तों सूरीनाम देश के और आगे हम जाई है भैया पोकिंग तो खवापंद बरूफे योहान अडोल्फ पेलिंगस्ट्रात में हाँ योहान अडोल्फ पेलिंगस्ट्रात में जो ने बिस्कुटवा के बारे में बता रही ओकर बारे में जो रूफरवारा भैया फास्ट कैंटीकन लगाया रहा ये बत या तो लोग के ना बता रही हम लोग ओहू तो लोग के हम जल्दी से बता दी वन आदमी बोले कैंती के फलतवा ना लिख ले रहे नंबर वहां भैया चोर भैया दांगी हुआ पे जहां ना चाहे दागे के मौसी तो बोली चुतरिया आप दागे ना ना ना ना बहुत खराब का जहां दागी से एगो बरूफिंग भैले दम बोर्ड त्रांत में श्री नाम में तो हुआ एगो सेवरन त्वेतक यार का मान के लगल है ओकर खसलाख दिल में भैया हाँ अब देखो खसलाख दिल मोई से अपन काम कर पावे कि ना कर पावे है हुआ पे जाए क्योंकि लगल है स्कोतवन और खमस्कर दफरदाख तखेंगे भांदोर ओकर सोना के केती ले के मोबिल ले के भग गए है और बोले ओकर भाई जो रहा भयवा गए है लड़े भयवो से पिस्तौल तानी से भयवा को ऊपर और दोनों भयवा को ऊपर फाल करके और ये का बोले है रोफर ऊपर से दाग के एगो भग्य भैया और वो हस के थिंग फ्रॉम द हॉर्स क्रूक है स्लाग तो फॉर फर्सेट से वार्नर वॉर्सलिंग ऑन स्टोन मेंस तो आप लोग को हम एक गीत सुनाते हैं हम आते हैं बाद में।

और एक चीज तो हम भी मांगते हैं और पहला बार नहीं बेर बेर हम मांगेंगे हमारे दोस्तों हमारे यारों और वो चीज है रेडियो फहन पिछू लगाए रखना।

दोस्तों अपना रेडियो फाउन का समाचार को लेकर हम और आगे को बढ़ते हैं। बस सुनते ही रहो जो हर मंगलवार को हमारा प्रोग्राम और शुक्रवार को हम लाइव चलाते हैं सूरीनाम की न्यूज से लेकर और देश के समाचार आपको हम सुनाएंगे। देखो भैया एनडीपी के आदमी लोन एनडीपी छोड़ के और जा है भैया, तो सिमोन का बोले हैं एनडीपी फोर्सेतर बोले ओफर फॉर ट्रैक मेर हिबा के और रहमानी की खाद मेंशन है एक दू बोले आदमी है बोले ना खुशियालिम जो चीज हम करीला तो बोले निकल के या लेकिन जनता तो भी कितना खुशियालिम ना भैया जो हमारे देश में इतना दुख है। तो एनडीपी बोले है बीते हुए हफ्ता में बोले कितना प्रोमिनेंट पार्टी लीडर के बोले छोड़ के एनडीपी भग है। सो आज भैया अन प्लीज सो उन फन बहुतर से रोमानो मेरहिबा और बोले हैगा पंत बैठे के कोऑर्डिनेट करत रहा और फॉर्मल का ऑफ डीलिंग फोर्सेटर लोनर्स रा महनी बोले ये दोनों छोड़ के अपन लेट मार्च का धर के और बोले चल गए हैं। NDP voorzitter Jennifer Simon zegt dat de dergelijke bewegingen binnen politieke partijen die in de coalitie zitten vaker voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat er ook personen zijn die terug wensen te keren naar de partij. Toen als je NDP ke partij ke baren bhi hum bolit log ke batai dei ki toria kaisi ek aurat ke up baat hum karila एगो औरत भैया खूब सोना के केती पहन के चमकावत रहा मौसी खूब चमकावत रहा बस उतरे में भैया चमकते चम चम चम चम चमकत रहा सो मार के भैया बस लतूर वेक में खूब चमकाए रहेगो इन फेस तक यार के औरत और चमकावत चमकावत अपन फ्रेंड से गेल हां नार गोरबा खान फॉर फेरतीर नहीं गोरबा फेरतीर को जो भैया महिया लिखल है और बोले हैगा उतरे में बोले ना से एनिगे टाइम दार हद डोरगेब्रागट बेसलोटन से te vertrekken, te bolle vertrekken niemand die jij, te bolle het slachtoffer nam plaats in autom bolle een badgeli, terwijl ook er vriend was die onder behere khada raha, ohi me bhaiya dui mila aile hai, dui mila aile bhaiya, bolle de vertrag te bolle pistool nikare se dui mila, a bolle hamar vriend ke upper bhaiya slachtoffer hem eens in voertuig plaats te nemen, de man weigerde, plus rukte de verdachte haar hasketting van de vrouw weg. Vervolgens stapte hij in een gereestaande Toyota Fitz. Maar die tjuri hoi bhaiya. Pijle Mark 2 se hoort ra. Op Toyota Fitz bood in hem van Jai Roof Srila. Tweede Toyota Fitz ke baare mein ja hai man nani. In de eerste melding werd gesproken over meerdere verdachten. Maar uit onderzoek bleek dat alleen één gewapende persoon te zijn. सना में भैया खेती फेती पहन के ना जाइए यहाँ से ये भाजी लोग के बोली ले जाइए नखू नखू लाल उल कर लियो ओठ ओठ लाल कर लियो लेकिन खोना ना पहन के जाइए दबलाई ओबलाई के कुछ ब्लिंग ब्लिंग टांग लियो उरिया गुरिया नहीं बिना मारे मराए जाइयो ऐसे बांट में बता रही है। देखो तो रोफल भैया कुछ ना पावे खसलाख दे लुए में पिस्तौल से दाग देवे है अभी ओकर न्यूज आप लोग के बताए हैं। तो ऐसे है भैया ऐसे है सूरीनाम के बातचीत हुए मथुरा का बोले फिर यहाँ पे के मथुरा का बोले मथुरा बोले है सिमोन्स प्रेसिडेंट बोले हैगा अपरे के बोले बहुत लाख ऑफर करे हैं कि हमार फोर रखें फिर यहाँ पे के हमें बहुत स्लेख कासा दे से बोले कुछ ना दे बोले बहुत स्लेख तू स्टंट में बोले हमें दे से दसवा वही हमारे दसवा में तेरा प्रॉब्लम है। तब मथुरा बोले मुहा बन कर मुँह बनकर बोले मुहा बनकर बोले तू हम लोग के कसूर देवे है बोले प्रॉब्लम हुआ तो एनडीपी रखी रही 2015 तो 2020 में अपरे कर ले रहा जो कर माखत रहा प्लेटफॉर्म जो रहा भैया लिंक प्लेटफॉर्म तुरंत ऊपर कर दे ले कर्जा ऊपर कर्जा ले ले और बोले चपराई के बैठ गए बाटे अब बोले कि फे यहां पे करी से ई बार बोले है
Mathura bole he VHP ke bole he NDP regering die tussen 2015 en 20 aan de macht was, beleid waarvan oorsprong van deze probleem. Orbole president is begonnen met een slachtofferrol door aan te geven die situatie hem heel krap overleggen. Bole je schetst dat je in 2025 een heel moeilijke situatie hebt overgenomen. Bole maar je hebt zelf daarbij bijdragen. Natuurlijk hebben alle partijen bijgedragen, maar wie heeft gezorgd voor al die schulden die als een strop om onze nek zitten? Ibad Matura Bolehega, een derde van onze begroting gaat naar schulden. 1,8 miljard Amerikaan dollar. Ke bole hem lo karja baati bole kali karja bhara hai. Au bole karja to hi loon to le rahe le. Het zijn schulden die gemaakt zijn door haar regering. Jab voorzitter la DNA ke parlement ke. Au bole oopriode me bole staatsschuld keer op keer stulen badlat rahe le. Dan moet je je wel van bewust zijn. Weten, beseffen daarvan niet dat het moeilijk is. Maar herstellen veel moeilijker is. Daarom moet je altijd zorgvuldig beleid uit. Uitvoeren en beslissingen nemen die altijd in de belang zijn van zijn Isabat. Matura ego interview op Bolise Dosto Anewala Saniwarke. Binnenkort Anewala Saniwarke Dosto. Hame ego interview programma hey, om 1400 uur. 10 oktober ke om 1400 uur heb ik een interviewprogramma. Ostaat ik ostaat, maha ostaat, Sunder hiera hiera rehega om 2 baje, aur pandit hiera rehega, aur aur log hiera rehega, sathe sath, Suriname des me, Nachaniya Champak bhi hum log aisending me labe, joan hamara Hindu Vishwa joan hai, hamara Hindu Vishwa ke maare me aap log chano hai, Suriname des me ketra misbraik hove hai, the जीप पे सबन भैया ले अगरबत्ती ना अगरबत्ती का बोले है ऊ का बोले है आगे बार बार और कटलिस लेके भांजे हैं और का बोले है नाचे हैं मंदिर में और कटलिस लेके भांजे और रात के जाई के पर्दो फिल्म बनावे हैं तो ई सब चीज भैया हम लोग बतिया कि हम लोग के हिंदू धर्म में और लोन्ना के नाच के जो मध्य है वत होत ओकर खात हम लोग उस्ताद को उस्ताद बजाब जो हम लोग के पुराना नगारा मास्टर है हम लोग के ढोल मास्टर देवराव रावराज सुरेन अन का बोले है अन हीरा सुंदर हीरा चंपा इस लुंडा के नाच वाले आदमी वहां फ्राख कि हम लोग के धर्म में ब्याह शादी में नौता है कानी में कौन ची हो रहे हुए है कौन ची ना हो रहे हुए है सो दैट वो अंबेच ऑफ हेल्थ ने क्रैक दी गesprek गाव दो वहां निमन फरनेदर इधर इन इन सन इन सन वार्डन लात मा वी विल वेल ओवर ओस हिंदूइज्म vertellen wat namelijk in een bruiloft tijdens de लुंडा नाच moet gaan gebeuren dat is heel belangrijk want er wordt het heel veel misbruik gemaakt, waardoor vandaag nu een heftige discussie is op de sociale media. Dus dat wil ik even doorgeven, beste mensen. Toen zat de zaad hem ook aan Mangila Jai. Mathura vindt dat president Jennifer Simon in haar jaren op verschillende punten ook tekort door de bocht is gegaan. Er moeten keiharde prioriteiten worden gesteld, terwijl bij de verhervorming van de overheidsapparaten ook moet worden aangegeven waar er zal worden bezuinigd. To ye baatjeet hai hamare pyare pyare pyare pyare sundar sundar janta jo aapko hum batate hain ab dekho bhaiya cadence jaane musico alto andaag mange VHP ke politicus aur artist Arnold Bukuru beter bekend als cadence badka VHP er bhaiya bole VHP volgens hem zijn er personen binnen de leiding van de VHP zogenaamde Bromki Jari tegenwerken, waardoor deze afbrokkelt. Bolle partijleider Santoki Marge heeft evaluatieperiode maar had ingesteld.
Obbele haar koers moet aanpassen en dreigt zelf met vertrek als hij naar eigen zeggen niet correct wordt behandeld. Obbele OVAP moet ze niet krijgen, want ze van bromtje jaren is nakker is en toch hier had de karakter. Bolle op nakker he, bolle onder voorzitter Aziz Kumar Gayadin, volgens hem de enige die telefonisch contact met hem opnam en hem uitnodigde voor een persoonlijk gesprek. Dat gesprek vond plaats in de fractiekamer van VHP. Obbele volgens VHP'er toont dit aan Gaya die nog gevoel heeft voor de partij. Obbele de artiest zegt dat hij zijn kritiek vooral uitspreekt in het belang van VHP achterban. Obbele Boekroe zegt kansen te zien voor VHP. Volgens hem zou de partij NDP verslaan als er vandaag verkiezingen zou worden gehouden. Hij vindt daarom jammer dat VHP-leiding onvoldoende inzet dat er hard gewerkt moet worden. Te ibad kadensi bole he. VHP'er bole je ook een aandacht na miliga. Te bole ki u bole ki partijja chorke. Aur chal jaiga. Hamari janta aise baat he. अब देखो भैया हम लोग जाने ला शहर में हम लोग के रैक सेटिंग हुए लेकिन अब देखो रैक सेटिंग अल्बिना भी हुई भाई अल्बिना भी हुई बताया गया है कि एगो रैक मांग बले देशांतरालिसांसी फन रैक स्प्रांग सेंड सेटिंग है ना मुंगो एम्ब्रोकोपुंडो ने ऐड खबर है ना अल्बिना पहले मुंगो ब्रोकोपुंडो मोटा अल्बिना भी होएगा ook de afdeling legalisatie gaat voortaan rechtstreeks dienstverlening aanbieden Albina. Rechtspraak dichter bij de burger. Tijdens de openingsceremonie sprak Auro DC Bolis Marwijneke Marvin die dank uit aan het hof die hem lukke partners uitbreid hem lukke relatie hem lukke Albina hebben hier per rechtspraak hoepaiga legalisatie voortaan in Albina. Tijdens de ceremonie waren medewerkers van de afdeling legalisatie aanwezig. Mevrouw Kortram en mevrouw Rees overhanden documenten aan burgers onder toezicht van de gevier. Toen het je baat heeft dat Albina me bij rechtszaak hoi. Nee, sabke aweke pare hee. Aor sahre me, bhaiya ekar baare me, aise baat chij hove hee. तो हम और आगे जाए भैया क्यूबा के ओर और ट्रंप के ओर क्यूबा तेखन स्प्रेक करे क्यूबा स्प्रेक ट्रंप तेखन मेंस बोले अमेरिका के तेखन स्प्रेक करे से तेजस अंदर हंडलिंग क्यूबा के बात हुए है तो यहां बतावे अमेरिका क्यूबा में बोले अंदर हाउडन कांटेक्ट हैगा बोले फॉर्मूला अंदर हंडलिंग इज फॉलोज हवाना जोन क्यूबांबा बोले खेन स्प्रेक और एकर बारे में क्यूबा के डिप्लोमेट जोन है जोन अमेरिका में वाशिंगटन में Bore he communicatie kanalen tussen beide landen bestaan. Bore de contacten verlopen via persoonlijke ontmoeting, telefonische gesprekken, he WhatsApp gesprekken, he onderhandelingsagenda of de hervatting van de officiële gesprekken. Gebare me, hamare pyare pyare, mitha mitha janta he. To ek geet aanplok ke oud sunakar, abhi hum turant aan jayenge, apna. प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता एवरी ग्रीन बॉलीवुड सॉन्ग आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे हमारे प्यारे प्यारे सुने सुने सुने और वालों के बातचीत है

ये गीत आप लोग को हम सुनाते हैं। दोस्तों एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम को हम बस खत्म करेंगे यारो।

बेदी में खाली जाए सौंदर इनक फरफलिटिंग और बोले ऑफिशियल रिलेशन ना है ऐ दले बोले बैत फराओ हां इसे बोल ली तो भोग दे से छोड़ी भैया को महीने के मानचित है साथ साथ बुरोन तो बोले एक वेल नीत दाते का फर किसिंग इशू और साथ साथ भैया

और नीनना मुझको आए दादा हेमंत कुमार और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। तो कहते हैं महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा है, महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा, तेरी गुलाब जैसा है। महकती हुई जिस्म तेरी गुलाब जैसा है, नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पे लेने दे आंखों प्याली है, दो घूंट पी लेने आंखों प्यासी है, नशा तेरी आंखों में शराब जैसी है। तो दोस्तों हेमंत कुमार के बाद हम जाते हैं महेंद्र कपूर की ओर। फिल्म के नाम है हमराज, पुराना हमराज है दोस्तों, ये नया हमराज नहीं है, पुराना हमराज है। आओ सुना जाए।

0: और तुम अगर साथ देने को वादा करो तो क्या होगा। और ये फिल्म का नाम है हमराज महेंद्र कपूर का ये जोन है। तो हम भी जाते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर। फिल्म के नाम है 20 साल बाद।
1: जरा नजरों से कह दो जी

और ये है दादा हेमंत कुमार का, फिल्म के नाम है 20 साल बाद यारो। ये जालिम जुदाई ना होती, काश ये जालिम जुदाई ना होती, ऐ खुदा तूने ये चीज बनाई ना होती। हम ना हम उनसे मिलते ना प्यार होता, अपनी जिंदगी फिर पराई नहीं होता। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और ये है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग। और किसी पत्थर की मूरत से और क्या क्या है आओ सुना जाए। फिल्म के नाम है तुम अगर साथ देने का वादा के बाद।

और किसी पत्थर की मूरज से प्यार करने का इरादा है। और महेंद्र कपूर ने आप लोग को सुनाई है दोस्तों, और हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर चलते हैं कि आज हम आपको कुछ महेंद्र कपूर का गाना और कुछ दादा हेमंत कुमार का गीत आपको सुनाएगा। तो दिल के बाद जो कहते हैं तो कहते हैं, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसे चाहने के, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पड़ जाते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पर जाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है बिन बादल बरसात की ओर हम जाते हैं। और ये है दादा हेमंत कुमार, नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है, जिस फिल्म में आशा परीख ने काम किया है।

और एक बार जरा फिर कह रो मुझे शर्मा की तुम दीवाना। दादा हेमंत कुमार नैतिक लता जी का ये गया हुआ सॉन्ग है बीन बादल बरसात। तो हम कहते हैं दोस्तों, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब है, दास्तां भी बड़ी अजीब है, बड़ी मुश्किल से इसकी खुशी खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर किस खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं और दादा हेमंत कुमार के बात में और महेंद्र कपूर की ओर, जिस फिल्म में सुनील दत्त काम किया है और माल्हा जीना ने काम किया है, मूवी के नाम है गुमराह।

और इन हवाओं में यानी कि इन घटाओं में, और आज हम आप लोग को हमारे यारो, आज आप लोग को हम महेंद्र कुमार और दादा हेमंत कुमार का गीत कुछ सुनाएंगे। ये मूवी का नाम था गुमराह, और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। कहते हैं दोस्तों, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है। मेरी आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है, तेरे आगे जमाना है। तो इसके बाद हम चलते हैं, और वो है मूवी का नाम है कोहरा। नाइटिंगेल लता जी और दादा हेमंत कुमार का ये जो है

और बेकरारी दिल, और बेकरारी दिल के बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाएंगे हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं कि कहते हैं कि देखकर तुमको अस्कर, देखकर तुमको अक्सर हमें ऐ एहसान होता है, कभी कभी गम देने वाला भी कितना खास होता है। हमारे यारो तो उसके बाद हम चलते हैं और वो है महेंद्र कपूर नाइटिंगेल लता जी के जोन की ओर।

और इंतजार करना तो चाहिए आई दिन बहार की, और यानी कि इस ओल्ड इज गोल्ड का सॉन्ग है दोस्तों। और जो गीत अब की बार है वो है एक रोमांटिक सॉन्ग है, और जिसमें महेंद्र कपूर ने गाया है आशा जी के साथ में।

हम जब भी सिमत के आम की फिल्म के नाम है वक्त 1965 का ये गाया हुआ जोंग है और ये गीत जो है वो है आशा जी और महेंद्र कपूर का गाया हुआ सॉन्ग है। फिल्म के नाम है वक्त।

काला काला चश्मा लगैली, ये कुछ नेपाली सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो। और उसके बाद हम आप लोग को और कुछ सुनाएंगे।

और ये काला काला मेरे ख्याल से आंखें पे और चश्मा लगैली, ये नेपाली जोंग है दोस्तों। कुछ समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, लेकिन जो उसका जोंग है, ढंग है, हमारा बॉलीवुड सॉन्ग के स्टाइल है। तो आज आप लोग को हम सुनाएंगे, हम और चलते हैं, एक रीमिक्स हो जाए नेपाली का जोंग।

करोड़ों सो कुछ रिमिक सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते ही रहेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं एक गीत की ओर, और वो है सुशांत काशी सारंगी के वांछित हो रहा है। और क्या है आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है, लेकिन पूरा नेपाली सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे।

और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, उसके बाद हम अगला गीत की ओर जाते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को नेपाली सॉन्ग हिट ऑफ मशहूर फन त्यार तक नेपाली सॉन्ग्स और मूवी सॉन्ग्स भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये सब गीतों गीत जो है और बहुत अच्छे से गाया हुआ है, आओ हम सब मिलकर सुना जाए।

दोस्तों, आपको हमारा यही आशा है कि आपको ये नेपाली सॉन्ग भी आपको अच्छा लगेगी। आप जानते हैं बेरानियो फाहन हैप्टी आलस इन है, कभी तो नेपाली होता है तो कभी भोजपुरी सॉन्ग होता है, तो कभी भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशस के होता है, तो कभी बैठक गाना होता है, तो कभी बॉलीवुड ऑल इज गोल्ड सॉन्ग, और कभी रीमिक्स, तो कभी नया सॉन्ग। दिस वी हैव आलस इन हेसमेंसी एंड दैट इज द क्वालिटी फन ऑन सी रेडियो फोन। आओ एक और चला जाए, नगर नंजी नालाल, नगर नंजी नालाल।

और नागर नंजी नलाल अदिच्या गदवी का ये जोंग है। हमारे दोस्तों नोगमाउस वै जैन फन अलस इन हैस en dat is alleen bij Radio Fahun Kipas, har ek rakam ki geet aap loon, sun sakte hai jaise ye bhi.

और माया तमाया हो दोस्तों, और माया तमाया के बाद तो हम चलते हैं कुछ डांस गीत की ओर, जो न्यू नेपाली लोक दोहरी सॉन्ग, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है 2057 तक, इसका मतलब तो हमारा समझ में नहीं आते, लेकिन यहाँ लिखल है न्यू नेपाली लोक दोहरी सॉन्ग 2057 तक, सलको पटको सर को पटको दोस्तों, आओ सुना जाए इसका मतलब क्या है।

और दोस्तों कुछ नेपाली सॉन्ग यहाँ से हम चलाते हैं और सुना जाए लाई भरी लाई।

और लाल परी हो लाल परी। उसके बाद हम और कहां जाते हैं, एक सॉन्ग और हो जाए।

0: और यहाँ क्या कर रहे हैं?
1: तुमने तो मुझे बुलाया था।
0: मैंने? आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको?
1: यही कुछ 9 या 10 साल पहले। बड़ी जल्दी भूल गई आप।
0: 9-10 साल पहले
1: तब मैंने कहा था कि अगर सब प्रोग्राम करेंगे तो देखेगा कौन। माफ करना सूफी, मुझे आने में जरा देर हो गई।

अभी आप सुन रहे थे मिशन कश्मीर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुन रहे थे बुमब्रो। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं, रिंद पोशमाओ।

0: खान साहब, कम इन खान साहब, खान साहब,
1: कम इन खान साहब।
2: अल्ताफ,
1: कैसी लगी मेरी पेंटिंग?
2: अल्ताफ कहाँ तुम?
0: आप में और मुझ में एक छोटा सा फर्क है खान साहब, मैं बच्चों की जान नहीं लेता।
2: अल्ताफ कहाँ तुम?
0: शंकराचार्य की तरफ देखिए खान साहब,
1: आपके जन्मदिन की फुलझड़ियां छूटने वाली है।
3: अभी आप सुन रहे थे रिंद पोशमाओ फ्रॉम द मूवी मिशन कश्मीर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। धड़कन है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे नाना करते प्यार।

नाना करते प्यार तुम्ही से कर गई। फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश किया है। सुनने वालों, जाने दिल में कब से है तू, लता जी के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाला है। फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे।

जाने दिल में कब से है तू, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और लता मंगेशकर जी की आवाज में। और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कोई कहे कहता रहे।

कोई कहे कहता रहे फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है, इसी फिल्म से हमने ये गीत चलाए हैं सुनने वालों। जब क्या चीज संदेह है तो क्या करनी चाहिए, चिल जस्ट चिल।

जस्ट चिल। और पता है कि जस्ट चिल का मतलब क्या है? क्योंकि आज संडे है तो आपको चिल करना है ना। पॉपकॉर्न खाओ, मस्त हो जाओ। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सर से सर का जाए दुपट्टा बेईमान रे।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पॉपकॉर्न खा मस्त हो जाओ, इसी फिल्म से हमने पेश किए है सुनिधि चौहान, विशाल और शेखर की आवाज में आपने सुने हैं दुपट्टा। और दुपट्टा के बाद आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दिल दी नजर।

टनी सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या पाठ है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

0: महा प्रोडक्शन।
1: लेग डाउन मी नानी, कार्लेस ड्राइफर द्रौपदी के आवाज में आप सुनेंगे
0: मन मस्य प्रे।
1: लेट्स डांस।

की बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा नेहरू सिविल शास्त्र के बात है जब ये सूरीनाम देश आया और उसी समय पर एक बार बना था डिस्ट्रिक्ट पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

0: हीलियम मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one.

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके मन में उपस्थित हुआ हूँ सुंदर से कार्यक्रम लेकर। यहाँ से 8 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आज जबकि बुधवार अक्टूबर के 7 तारीख के शाम के कार्यक्रम है। कुछ मिलने जुले गीत, कुछ नगमे, कुछ प्यार भरी बातें आपके साथ जो हैगा तो करेंगे और यही आशा लगाए हैं कि जरूर आप भी हमारे साथ देंगे। अगर आप अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं या कोई गीत की मांग करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के नंबर है 0622 64 74 64। शाम के वक्त है और काफ़ी लोग जो घर पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर कुछ वेस्ट इंडीज संगीत हम आपके लिए पेश करते हैं, कुछ बैठक गाना पेश करते हैं। आशा लगाए हुए कि ज़रूर आप सभी को भी पसंद आएंगे। तो पेश हैं तुझे सूरज कहूँ या चंदा, और ये सुंदर संगीत आपके नाम पेश करते हैं हम, और ये भी बेहद सुंदर नगमा राम नारायण की आवाज में आपके लिए पेश किया जाएगा। तो भेजे
1: always have to wait for a special occasion to celebrate with our loved ones, because every day we're alive is a special occasion.

तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, रेमुन राम नारायण और साथ में राकेश जानकर दोनों मिलकर और फरमाई है ये सुंदर से गीत। और गीत जो अब की बार आप सुनने वालों के नाम सुने हैं तो वो है सुरनाम के मशहूर गायक श्री रामदेव चैतू फरमाने के लिए जा रहे हैं अब की बार। और ये भटकते हुए गीत आप सुनने वालों के नाम पेश कर रहे हैं मैया मोरी परस पर।

हम देव चेतु के मधुर आवाज में सुने आपके मैया मोरी बर्ष बर्ष रसवाई। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं और गीत जो आपके नाम है तो एक और ऐसा ही सुंदर से भड़कते हुए नगमा पेश है।

दोस्तों आपको याद दिलाते हैं कि यह कार्यक्रम बिल्कुल लाइव आपके मध्य में प्रस्तुत किया जा रहा है, और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। 0724 तक सेफ नफेट 4 तक पर आप संपर्क करें।

लंगर मोरी गागर फोरी गई हो रही और ये त्रिनिदाद के मशहूर गायक इसाक जानकरन की आवाज में आज के कार्यक्रम में आप सुने हैं दोस्तों। तो जैसे हमने बताए तो ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हैगा और आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। जानकारी के लिए या तो अपना विचार देने के लिए, संपर्क के लिए आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं 9724 पर, और ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों लेकर चलते हैं और जब गीतों के पास आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ही सत्यानंद रेखा जी अब की बार फरमाने के लिए जा रहे हैं और ये सुंदर सनगमा के बोल हैं, तेरी मुरली की मधुर तान।

कन्हैया जी को फिर से बजाएं जाओ रे, और क्या बजाएंगे कि मुरली के और मुरली के ये मधुरी तान कहे कि फिर से बजाएं जाओ रे, और हमने आपके लिए इसे बजाकर और रख दिए हैं। तो लेकर चलते हैं, अब की बार चंद्रवती चैतू फरमाने के लिए जा रहे हैं।

प्यार से उसे सजाया हमने, और जो सपनों ने संसार बसाया उसमें हमने एक महल बसाया। और महल बसा कर दोस्तों उसे प्यार से भी सजा देते हैं। ये सपनों वाला जो संसार है हम सभी बनाते रहते हैं और पेश करते रहते हैं। तो अब की बात लेकर चलते हैं एक बार फिर से सत्यानंद रेखा। पल पल बीती जा तुमरिया, प्यारा प्यारा बचपन का।

पल पल बीते थे जहाँ तुम्हारिया प्यारा प्यारा बचपन का। और दोस्तों अगर ऐसे गीत हम सुनते हैं तो हमारे भी बचपन याद आ जाते हैं और वो बचपन धीरे धीरे कैसे बीत कर और जवानी पा जाए और वो सुंदर से प्यारा प्यारा बचपन हम पीछे छोड़ाए हैं। हरिदत्त जय राम फरमाने के लिए जा रहे अब की बार। चोर लोचक के माला जपते साधु तोरे ताला, देखो रे लाला दुनिया का खेल निराला।

दुनिया का खेल निराला और हरिदत्त जयराम की आवाज में ये गीत आज के कार्यक्रम में आप सुने हैं और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं क्रिश राम खेलावन।

चोरी तोरी नई मशीनियां छापे नकली नकली नोट और ये भी आम सुनी क्रिस राम खिलावन की आवाज में ही। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते धोबिया मर जाइए रे राजू शिव गुलाम।

0: रे पुराण धवाए डाड़ो क्योंकि धबिया मर जाइए। तो जल्दी जल्दी से आप अपना सभी चादर धलवाए डाड़ो, क्या है कि मरने से पहले धवाए डाड़े।
1: तो मैं क्या करूं?
0: Once again, राजू से गुलाम।
1: शायर हूं, कोई शायरा बैठ जाए तो मैं क्या करूं? फर्ज अपनी निभाते रहे नूर का और अस्फीन रूठ जाए तो मैं क्या करूं? बात सुनाई छप्पन छोरी को कौन समझाएगा? बात सुनाई छप्पन छोरी को कौन समझाएगा?

चुगुरखोर मेहरारू घर घर में आग लगाएगा, तो जरूर इससे आप बच के रहें दोस्तों। और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं तो रिक्लाम के बारी हो रहा है और कार्यक्रम में जो बैठक गाना हमने पेश किए हैं तो ये आखिरी गीत के साथ साथ समाप्त होने पा रहा है। रिक्लाम के बाद कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स लेकर उपस्थित होने वाला हूँ, आप हमारे साथ ही रहें। अपना विचार देने के लिए या जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं 0623 24 64 Once again 0623 24 64

आतिफ असलम के पास भाई ये सुंदर से गीत आज के कार्यक्रम में दोस्तों आप सुने हैं और यही आशा उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। बेहद ही सुंदर नगमा की बारी है और हम लेकर चलते हैं आपको ये गीत यही आशा के साथ कि जरूर आप सभी को भी पसंद आएंगे।

दोस्तों याद रखिए, हर एक काम के लिए, हर एक जानकारी के लिए 07 3 2 6 2 7 7 7 ये हमारे दफ्तर की नंबर है। और यदि आप हमारे कार्यक्रम से संपर्क करना चाहते हैं, ये सुंदर से कार्यक्रम के बारे में कुछ टिप्पणी लिखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप है 07 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

रेडियो फाउंड के माध्यम से कुछ पुराने कुछ नई बातें होते रहते हैं। गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते दोस्तों, और गीत जो अब की बार हम पेश करने के लिए जा रहे हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने बतलाई है, गीत पेश करते हैं आप सुनने वालों के नाम, अपने तो अपने होते हैं।

सोनू निगम, जयेश गांधी एंड जसपिंदर नरुला की आवाज में सुने आपकी अपनी तो ही अपनी होते हैं। और ये सुंदर से नगमा आज के कार्यक्रम में रेडियो फाहुन के माध्यम से हमने पेश किए हैं। अदनान सामी फरमाने के लिए जा रहे हैं कभी नहीं, तो ये गीत हमारा आप मिलकर सुनते हैं।

दिस सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने और साथ में नाम सामी मिलकर फरमाए हैं कभी नहीं। और ऐसे कुछ नगमे कार्यक्रम में चुने हैं दोस्तों, कुछ प्यार भरे कुछ दर्द भरे बयान कार्यक्रम में पेश कर रहे हैं

0: बन के तेरा जोगी और कार्यक्रम में ये गीत हमने पेश किए हैं। दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाते हैं, हर एक जानकारी के लिए, हर एक काम के लिए 0 7 3 2 6 7 7 तक। और यदि आप हमारे कार्यक्रम के लिए यानी ये सुंदर से कार्यक्रम के लिए आप इसमें कुछ संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे प्रशोधक संपर्क करना चाहते हैं, तो 0 7 2 6 7 7 4 6 तक। नखमाल्स 0 7 2 6 7 7 4 6 तक पर सिर्फ व्हाट्सएप बरिख्त आप भेज सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जब गीतों की सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में जो बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और यही आशा लगाए हुए कि आप सभी को भी पसंद आ रही होगी, कुछ ऐसे नंग में कुछ प्यार भरी बातें, कुछ प्यार भरे नंग में आप सुनने वालों के नाम चुने हैं और कुछ गीत भी आपके लिए जो है हम लेकर आए हैं, आशा लगाए हुए कि आप सभी भी हमारे गीत से पसंद उठाएंगे और गीत सुजो सराहेंगे। तो पेश करते हैं और जो गीत हम लेकर आए हैं परदेसिया, परम सुंदरी फिल्म के नाम है सिद्धार्थ के और जानवी इसमें काम किए हैं और हम आपके नाम पेश करते हैं।
1: स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी।

फिल्म के नाम परम सुंदरी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी ये इसमें काम किए हैं। सोनू निगम की आवाज में हमने आप सुंदर से गनगमा आप सुनने वालों के नाम रख दिए। आशा लगाई है कि आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों लेकर चलते हैं और गीत जो अब की बार हम आपके नाम पेश करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी राहत फतेह अली खान की आवाज है और आपके नाम पेश करते हैं। जिया धड़क धड़क जाए, फिल्म कलजुग से निकालते हैं अन्नू मलिक के साज है, असीन राजा के लिखा हुआ गीत।

तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, दिया धड़क झड़क जाए। और ये आपके नाम रखे हैं दोस्तों। कहते हैं कि छूले आसमान जमी की तलाश न कर, छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी से और खुशी को तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। पेश करते हैं इश्क मंजूर।

इश्क मंजूर फरमाई है कार्यक्रम में दोस्तों, और कि इश्क मंजूर है या नहीं तो ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0624 तक, और दफ्तर के नंबर है 0733 20 70 77, तो आप अपना विचार दे सकते हैं संपर्क के लिए 0624 तक, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, और ये भी रेक्स ट्रिक्स।

सोनू निगम ने ये सुंदर सनगमा फरमाई हैं और ये भड़कते हुए गीत आपके नाम हमने रखे हैं, आशा लगाए हुए कि आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, है जो पास उसे संभाल कर रखना मेरे दोस्त, खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। रेडियो फाउंड के माध्यम से कार्यक्रम आपके मन में पेश किया जाता है और गीत लेकर चलते हैं प्रीत रे, फिल्म का नाम।

दर्शन एंड जुनिता के आवाज में आप सुन रहे हैं कि प्रीत रे फिल्म धड़क द्वितीय से निकाले हैं और पेश किए हैं। उदित नारायण जी फरमाने के लिए जा रहे हैं, मेरी सांसों में बसे है तुम।

0: दूर रहकर भी तेरी दोस्ती निभाऊंगा। धाटो मिले स्माइटी मुकेश की आवाज में आज ये कार्यक्रम में आज गीत सुनी और दोस्तों की बार लेकर चलते हैं सचिन देव बर्मन फरमाने के लिए जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में।
1: कौन है तेरा
0: वह कौन है तेरा मुसाफिर।

वह कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। सचिंद्र बर्मन की आवाज में ये सुंदर नगमा कार्यक्रम में पेश किए हैं। ये रात्रि कार्यक्रम है दोस्तों, कश्ती का सुहाना सफर। ये कश्ती का सुहाना सफर है जो पिछले दिनों में हम चला रहे थे, और वही कश्ती वही नौका आज हम एक बार फिर से दिनहाक से निकाल रहे हैं। यदि आप इस कश्ती में हमारे साथ बैठकर और प्यार की दुनिया या तो दर्द की दुनिया की सफर तय करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हो जाइए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप संदेश भेजिए 9724 पर, हमारे हम सफर बन जाइए और मिलकर ये सफर तय हम करेंगे। दादा हेमंत कुमार अब की बार फरमाने के लिए जा रहे हैं।

0: आज मुझे कुछ कहना है।
1: एक कश्ती का खामोश शहर है, रात भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बश्ती है, लहरों की शहनाई भी। दोस्तों, ये कार्यक्रम में आप भी साथ हो जाइए और मिलकर हम ये कश्ती का सफर आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्यार भरे, कुछ दर्द भरे बातें करेंगे, ऐसे कुछ नंग में आप सुनने वालों के नाम चुने हैं। मुझे एक खबर अंदर आई है, एक व्हाट्सएप बरेख अंदर आई है। तन्हा शहर के रहने वाले श्रीमान महेंद्र ने अब संदेश भेजे हैं, संपर्क किए हैं और कहते को कार्यक्रम उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, एक और मुकेश के गीत मांग किए हैं। तो भाई महेंद्र, आपके नाम पेश करते हैं ये सुंदर से मुकेश के गीत।

इस सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। नाट्रोपिलियंस माइटे मुकेश और साथियों मिलकर ये सुंदर शनगमा फरमाए हैं। आज रात्रि के ये सुंदर सी कष्टी का सुहाना सफर नामक कार्यक्रम में गमों में हंसने वालों को भुलाया नहीं जाता, गमों को में हंसने वालों को भुलाया नहीं जाता, पानी को लहरों से हटाया नहीं जाता। बनने वाले बन जाते हैं मेरे दोस्त, अपने कहकर किसी को अपनाया नहीं जाता।

मशहूर गायक महदी हसन की आवाज में सुने आज तक याद है वो, और बाकी बयान आप सुन रहे थे दोस्तों। कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, कुछ हसीन ख्वाब आंखों में आकर एक नया दर्द दे जाते हैं। मन के कोरे कागज पर वो आसमानों की तस्वीर सजाते हैं, मन खुशियों से भर के आंखों में आंसू दे जाते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं।

दिल के सोने आंगन में आशाओं के फूल खिलाते हैं, बंद पड़े साजों को गीत नया दे जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, दिल की अंधेरी दुनिया में एक चिराग नया जलाते हैं, दिल की नई दुनिया में एक चिराग जलाते हैं, प्यार की बारिश करके वो इंद्रधनुष का रंग दे जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं।

हमारे दनहाँ शहर के रहने वाले हैं श्रीमान सुरेश जी, वो भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किए हैं और हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। हाय सुरेश, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्हाट्सएप पर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

हमराही मेरे हमराही लता मंगेशकर और साथियों मिलकर फरमाए हैं कार्यक्रम में दोस्तों, और फाहून की आवाज़ ही आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। और आपको याद दिलाते हैं, यदि आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या तो आप कोई काम करवाना चाहते तो 0 7 3 2 7 2 7 7 हमारा दफ्तर का नंबर है। और यदि आप मुझसे और सीधे डायरेक्ट संपर्क में आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कीजिए 0 7 2 4 6 0 7 2 4 6 0 7 2 4 6 7 4 6 पर संपर्क करें और आपके व्हाट्सअप हमारे सराखों पर

कुमार के मधुर आवाज में आप सुने आए दिल अब कहीं ना जा। लता जी आपके बार फरमाने के लिए जा रहे हैं, जब रात्रि कार्यक्रम है दोस्तों, तो आपके नाम पेश करते हैं।

नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम, एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप साथियों। पावन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पावन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन्द्र कृष्णा दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुना आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यशोमीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा।

आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप दायर करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान फ्राइडा टेनिस कंतोर यूरोप फोकन टेलीफोन नंबर कंतोर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यार। नहीं तो फिर है उनसे क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूलती सिक ऑलवेज लेकरदर बाय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। टॉक हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक 30 मिनट प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके भैया अमित जी ने आप सभी के खिदमत में पेश किया। जिस तौर तरीके से अमित भाई जी आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, ये यश उम्मीद है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम जो काफ़ी ज़बरदस्त था आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद अमित भाई जी हमारे फूल टीम की तरफ से, और आपको भी फूल टीम की तरफ से शुभ रात्रि। हो सकता है कि आपके घर पे एक जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का दिन मनाया जा रहा है। हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे खुशियाँ की खुशियाँ बधाइयाँ ही बधाइयाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। अनित फरखेत है बंधु, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाहुन हिंदुस्तानी को भी सुनते रहना, और थोड़ा बहुत तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना। फनहर्त पीटर साहब कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम। और हो सकता है कि आप कल परसों या आज कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मूर्ख इस वेर अंदाख है, नोइत अपखीफ है वो तो लेरते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी। सो चलो बिलो बी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अट योर लब डंट फॉर हेड लेस्टर। इसमें प्रवेश हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम, फैन फकांसी। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, या तो फकांसी पे हो, तो आपको भी एक हेल फैन फकांसी शुभ यात्रा। तमाम लोग सुनते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को ओपन फकांसी अदरस इंटरनेट के लहर द्वारा है। अपन टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप तो आप भी सुनिए हम लोगों को सो बेंट यू एंड ब्लाइव टू फन ऑल सब जो होता है फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे डेन हार्ट शेयर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू। तो साथियों प्रोग्राम की शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1970 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा है तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते और जरा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नास्ट ऑल दैट लीफ है वो सेंट मेंस हस्टीड और खुद ओप द आर्द ओम
elkaar lief te hebben. Kan deze kant mila kar bila kar laga kar aage ko

सुना है साथियों, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है, तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम। पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में सिर्फ नगमे 9 बजे से 10:30 बजे रात्रि तक सिर्फ नगमे आप सुनेंगे, जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बाटे हैं, शेर शायरी भी है, तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे रात्रि तक चलेगा यार। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। रफी साहब जी,

मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। साथियों, आज का इस हसीन रात का शुरुआत तापमान तकरीबन 18 डिग्री का था जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था, और थोड़ा बहुत बूंदे भी गिरना शुरू कर दिया था पानी का। तो ये रात्रि जो हसीन है, कुछ गर्मी था और कुछ अब ठंडा हो गया है। मैं शुरुआत करने वाला हूँ ये अति सुंदर बयान के साथ। दो नगमे हैं, ये आप सभी के नाम पे हैं, महान संगीतकार मास्टरो जयदेव जी का कंपोज किए हुए नगमे हैं। द क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता जी को लाते हैं प्रोग्राम में ये दोनों नगमे आप सभी को सुनाने के लिए, जो आप सभी के नाम पे मैं रख चुका हूँ, फ्रॉम द मूवी प्रेम पर्वत और मधुमती। जबरदस्त सॉन्ग है ये, दिल और उनकी निगाहों के साए। क्वीन ऑफ मेलोडी, ऑप्शन बेस्ट, लता जी।

क्या जबरदस्त कॉम्पोजिंग है ये महान संगीतकार मास्टरो जयदेव जी का। और लता जी हमेशा अपने इंटरव्यू में कितने बार कहा है ये महान संगीतकार जयदेव जी के पास जब मैं कुछ गाने रिकॉर्ड या रिहर्सल करने को जाती थी तो मैं अपने आप को कुछ और ज़्यादा तैयार करके जाती थी, क्योंकि इनका जो ऐसा था ना ये महान जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर का और हिल हूँ ऐस और रफ़ी साहब जी के लिए कुछ अति सुंदर सुंदर बेहतरीन से नगमे, मुकेश जी के लिए, किशोरदा के लिए कुछ नगमे और ख़ास करके तलत जी के लिए भी कुछ नगमे वो बनाया था जो काफ़ी हिट हुए। यानी तो फरखीत यौंगी नरासी मैस्त्रो हरिहरन जी हेफ हे लंग मैथ हेम ओक साम गवैरक दारम सैन द गजल्स फ्रॉम द मैस्त्रो हरिहरन ओक हेल हेल मोय नटलाइस्त्र। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए, लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला डमाइटी मुकेश जी को लाते हैं द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस। इट्स एन रिलीज्ड सॉन्ग और देखा जाए फिल्म लोरी जो कभी नहीं रिलीज किया गया था, महान संगीतकार नेत्रहीन द म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर प्रोड्यूसर कंपोजर मास्टरो रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ ये जबरदस्त सॉन्ग जो किसी फिल्म में नहीं फोर आया। पल भर जो बहला दे कोई ऐसी खुशियां दे, क्या बात है मुकेश जी के आवाज में स्पेशल फॉर द मुका फैंस।

सत्यमेव जयते। दिल को छू लेने वाला नगमा श्रोताओं के सामने पेश किया गया नॉन फिल्म सॉन्ग आयोजनी की एनिन सेवत कॉम्पोनेट डोर मैस्ट्रो जयदेव वर्मा खरीफ डोर उद्धव कुमार और गाने वाली थी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। 3 मिनट गुजर चुका है साथियों, 8:30 एक बार फिर लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्टथ्रॉब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी का ये ऑल्सो अन रिलीज्ड नॉन फिल्म सॉन्ग आप सुनिए। किसकी है रचना ये, स्पेशल फॉर द मुका फैंस।

लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुन रहे थे, खास करके स्पेशल फॉर द मुका फैंस। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, और वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए हमारे ज्ञानियों के लिए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं सिद्धांत के रूप में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यह शो उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए, अर्ज किया है मफ्रौ एन रंथ और वो कही है साथियों की, द फ्राग इज नीट ऑफ वे स्लाफ सेंग फॉर एन गुड डूल ऑफ फॉर एन स्लेक्ट डूल, द फ्राग इज नीट डिक्टाटूर डोर एन गुड बेंडे ऑफ डोर एन स्लेक्ट बेंडे, द फ्राग इज फ्रेहेड ऑफ डिक्टाटूर। एंड ik ga voor de vrijheid natuurlijk. Herman Brood जी ने कहा है, वै accepteren u zoals ik ben। हर एक मूलिश ने कहा है साथियों की, पॉलिटिक इज फ्लुइबार geschiedenis, geschiedenis इज gestolde पॉलिटिक। Johan Cruijff ne kaha hai saathiyo, voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. Nog eentje van Herman Brood, ze kunnen beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen. Humor. Van Zuid-Afrika Nelson Mandela ne kaha hai saathiyo ki, armoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewist. Nog eentje van maestro Johan Cruijff, ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. Meer citaten van Johan Cruijff, nog eentje van hem. Je moet de bal hebben om te schieten en schieten om te scoren, maar dat is toch logisch. Deze is een hele goeie van mevrouw Corrie ten Boom. Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van morgen ook niet op. Van vanavond Kaisri Charles Bernard Shaw, er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten, vertel mij dat. Er staat hier op ja, kuch gyan ke baate sun rahe the, jo kuch gyanio ne likha. और यही अशो उम्मीद लेकर मैं इन बातों को आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, 17 मिनट रह गया है 9 बजने में। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग मित संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगला बयान सुरों का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी को लाते प्रोग्राम में, एक फिल्म आखिरी दांव गकंपोनीर्ड डोर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एंड गेस्क्रीवन डोर हसरत जयपुरी, ऐसा ना होके दर्द से भरा हुआ बयान। एंजॉय द म्यूजिक।

From the movie Acri Down 1975, Lakshmik and Pyare Lal ke saaj par Ravi Sahib ji ke madhur awaaz mein aur alfaaz tha Hasrat Jaipuri ji ka. गरम मिनट रह गया है साथियों, 9 बजने में आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग में संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम. अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी फ्रॉम द मूवी साहेब बहादुर 1980 महान संगीतकार मैस्त्रो M&M द ग्रेट मदन मोहन जी के साहज पर राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे दर्द सा भरा हुआ गाना सुनिए मुश्किल है जीना द ग्रेट लता जी.

A masterpiece of composing by Maestro Eminem, The Great Madan Mohan Ji. और दिखाया फिल्म साहेब बहादुर में से निकाला था. ये थी सुंदर बयान है 1980, geschreven door Rajinder Krishan Ji. और क्या आवाज, क्या दर्द था इस गाने में जो लता जी ने हम लोगों को सुना रहे थे. साथियों, घड़ी की तरफ देखता हूं तो 5 मिनट रह गया है 9 बजने में. तो 1.5 मिनट का आलाप सुनिए सुरों का बादशाह, किंग ऑफ मेलोडी, रफी साहब जी की आवाज में.

क्या बात है, शुरू का बादशाह रेकिंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी का ये छोटा सा आलाप आप सुन रहे थे। तो साथियों भी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तान।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं के बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल ओबिलोबियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक बदाउट फॉर हेड लाइस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें जरूरी खबरें इश्तिहारे डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा। साथियों आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल टेडेंस कांटोर यूर फन मांडाग टोट फ्रेडाग ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोननंबर्स कांटोर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देखन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फ्रॉम हार्ट वेलकम। और इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। Benti noch geen lid van Faun Hindustani Radio, to guzaris die bidin kia jara hai, binti kia jara hai, kia bhi jal se jal Faun Hindustani Radio ka member bane, auro ko bhi banae. Aapko to dheer sare faida hi faida hai. En so als jullie allemaal al weten, hebben we ook onze eigen karaoke team, waar heel veel omroepers... Omroepsters live voor u aan het zingen zijn. En jullie hebben het ook al twee keer gehoord, hè? Elke laatste donderdag van de maand vanaf 6:00 's avonds live karaoke op de radio bij

0: live gaan zingen. Hè? Daar bent u ook van harte welkom. Tobi Jelse Jelte Faun in de Stanning Radio Kamember beneden. Ook op hier. En Sabi Jankari bel op 070-365-2247. Wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider van Faun in de Stanning Radio. De one and only maestro Johnny Number One. मिनट गुजर चुका है 9 बजकर साथियों बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म चरस तक जो रिलीज किया गया 1977 में और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है अपनी दूसरी पत्नी जी के साथ मलकाए हुस्न ब्यूटी क्वीन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ और नेगेटिव रोल में है अमजद खान अरुणा ईरानी और अजीत भी इस फिल्म में काम किए हैं तो फिल्म चरस्याब गाने सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है आनंद बख्शी के अल्फाजे एक अति सुंदर बयान आप सुनने वाले हैं जो मैं प्लेयर में रख चुका हूं आप सभी के खिदमत में और लाते हैं प्रोग्राम में संगीतकारों और महान महान कलाकारों का बादशाह और शहिंसा हसीनों का पुजारी किशोर दा को लाते हैं प्रोग्राम में साथ दे रहा है उनका भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी सुपर हिट सॉन्ग कल की हसीन मुलाकात के लिए
1: गुड नाइट
0: गुड नाइट
2: गुड नाइट
1: हाँ गुड नाइट
2: अच्छा गुड नाइट

Beautiful song, a wonderful song. From the movie Cheres, 1976. Sangeet Kanu ka Badshah Shahincha, the one and only Kishore Da, aur Lata ji ke awaaz mein aap sun rahe the. गुजर चुका है 9:00 साथियों और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर और नगमे चल रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है. हम पहुंच चुके हैं फिल्म चरस तक जो रिलीज किया गया था 1977 में. सुपर मूवी. अगला बयान जबरदस्त द्वैत सुनिए सुरों का देवी और सुरों का बादशाह के अल्फाजों में. रवि साहब और लता जी सुनाते हैं आप सभी को आजा तेरी याद आई. ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

Aja Teri Yaad Aayi, Jabardast duet Aap Sunrahe The, gezongen door Rafi Saab Aur Lataji uit de film Churras 1976. Aur Composition Sa Lakshmi Kant Pyare Lal Alfaze Anand Bakshiji Ka. 18 मिनट गुजर चुका है नौ बजकर साथियों. अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी ओल्ड इज गोल्ड चरस 1976. लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आप सुनिए ये दर्द से भरा हुआ बयान लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में.

ब्यूटीफुल सॉन्ग क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में ऑल दिस गोल्ड फ्रॉम द मूवी चरस 1976 गकंपोनेर्ड डोर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गेस्क्रीवन डोर आनंद बख्शी और आवाज लता जी। मिनट बाकी है साथियों, 9:30 बजने में अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और लाते हैं प्रोग्राम में एक बार आज के रात्रि में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नाइटिंगेल आयशा भोसले जी का ये सुपरहिट सॉन्ग आई द फिल्म चरस 1976 gecomponeerd door Lakshmikant Pyarelal en geschreven door Anand Bakshi. Mera naam hai Ballerina en picturize kiya gaya hai Beauty Queen Dream Girl Hema Malini ji par. To zarur fursat mile to ye jabardast super hit movie zarur dekhna. This is on YouTube.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, ग्रेट कंपोजिंग बाय महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक फिल्म च रस 1976 और लिखा है आनंद बख्शी आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज। पूरे 9:30 का वक्त हो चुका है साथियों, अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग है फिल्म चरस, महेंद्र कपूर इस बार पद्मश्री जी को लाते हैं और उनका साथ दे रहा है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नाइटिंगेल आशा भोसले जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज है और अल्फाज है आनंद बख्शी जी का। एक बार फिर कुछ चरस यानी या ड्रग्स यानी चरस जिसे हाशिश हम लोग कहते हैं यहाँ पर हाश, उनके बारे में इस फिल्म को बनाया गया था, तो उन्हीं के बारे में ये गाना भी आप सुनिए। ये चरस का नहीं और कुछ का धुआं है।

0: Jersey, Jersey. Title song from the movie Jersey, Queen of Rock and Roll. Asha Bosley, G.K. Beautiful Amas, met die Sundrabiana, Sundrete, gecomponeerd door Lakshmi Kanpyare Lal. En natuurlijk geschreven door Anand Bakshi Ji. छह मिनट गुजर चुका है साथियों, 9:30 अगला बयान और ये भी आखिरी सॉन्ग है फिल्म चरस। आप सुनिए एक बार फिर सुरुका देवी, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी, लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये एक अति सुंदर, दिल को छू लेने वाला बयान है। जरा अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की बदनाम हो गई, कह रही है लता जी सुरों में।
1: धूम जवानी धूम,

चल गए हम रिश्ते को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए हम रिश्ते को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। The five rules to win in life is control your emotions. Don't waste time on people who don't care. Keep your goals private. Keep your goals private. Wake up with purpose. Never give up. वो तो हमारे ही स्टाइल में बोलता भाई। Never give up, no matter what. And remember that. तो ये था कुछ अलग स्टाइल का शेर शायरी आज का इस हसीन रात्रि के प्रोग्राम में। अगला बयान आप सुनिए सभी नगमे मैं फिल्म चरस को आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1976 फिल्म, या दिल को थाम लीजिए माँ मामा मुदर फिल्म माँ 1976 में। और इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने काम किया है नोहन केर मिथ सिंह ट्वीड सेकंड वाइफ मलकाय हुस्न द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ, और माँ का रोल अदा की है द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सुपर एक्ट्रेस निरूपा रॉय जी ने। ओम प्रकाश और पेंटल भी इस मूवी में काम किए हैं। एक बार फिर द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है, और अल्फाज़े है अगेन फ्रॉम माएस्ट्रो आनंद बख्शी। तो फिल्म माँ से आप गाने सुनिए खलेक बिंगो है खलेक माँ तुझे ढूंढू कहाँ, जबरदस्त सॉन्ग माताओं के बारे में। तो जरा गौर से सुनिए अल्फाजे पे ध्यान दीजिए और जरा अपने माँ को भी याद कीजिए। क्या बात है, क्या अल्फाजे लिखा है आनंद बख्शी। स्टिल फंग तो और दो माँ तो माँ होते हैं यारो,

क्या बात है, मां तुझे ढूंढू कहां। रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर दर्द सा भरा हुआ बयान माँ के बारे में आप सुन रहे थे। एट फिल्म माँ टाइटल सॉन्ग कॉम्पोनेट और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खरीफ और आनंद बख्शी जी। 9 मिनट रह गया है 10 बजने में। साथियों, अगला बयान और इस बार लाते हैं संगीतकारों का बादशाह और शहिनशाह हसीनों का पुजारी किशोर दा एक बार फिर प्रोग्राम में जो फिल्म माँ 1977 तक। और सुनाते हैं आप सभी को ऐसी कोई बात

फन होम्स हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट 7 अक्टूबर 2026 का रात्रि का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। 4 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर रात्रि का प्रोग्राम है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एन अतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सुसलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एन अतिलक बदम्त फॉर एट लिस्टर्न, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से इस तिहारे जरूरी खबरें डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। Fights is enam surfies guarantee our quality star beyonds of the earth the plants. Sabhi jankari iske bare mein aap taar kare van maandag tot vrijdag tijdens kantoor.

vanaf 6 uur 's avonds live karaoke op Radio Fahon Hindustani Radio. तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बनी औरों को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। तो आप भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बन चुका है और बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी न्यूज़ तक पर आप तार करें और ऑटोमेटिक डोर प्रबंधनारों से टीम लीडर फ्रॉम फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो डॉन एंड ओनली मास्टरो Johnny number one. En natuurlijk bent u ook van harte welkom. Volg onze social media en ook die van onze omroepers. Dan gaat u zeer zeker binnenkort zien waar wij live voor u komen zingen, hè, gaan optreden. Dan bent u ook van harte welkom. Tot ziens. नेक मेरे गया है सुनाने को आप सभी को फिल्म माँ से जो 1976 में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया है हेमा मालिनी जी के साथ। एक बहुत ही मजेदार सॉन्ग है, रफी साहब जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे। गाऊंगा नाचूंगा रोऊंगा हंसूंगा क्या बात है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ।

0: अरे सॉन्ग असल में वो धर्मेंद्र जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया है नगमा, और वो इस फिल्म में एक हाथी को मना रहा था। मजेदार सॉन्ग। 12 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर धीरे धीरे वक्त भी करीब आने लगा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में आई दी फिल्म माना तिलक नहीं दी सेशन सेव द गकंपोनीर डोर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गेस्क्रीवे डोर आनंद बख्शी जी। मिलके सुनते हैं ये जबरदस्त ब्यूटीफुल सॉन्ग शहरों से दूर मस्ती में।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है, सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

Ja, wat hey, beautiful song. Bhaar het ritme king of Mary Lata Mangeshkar ji ke beautiful. Awaaz mein aap sun rahe the uit de film Ma 1976, gecomponeerd door Lakshmikant Pyare Lal ji. 17 minuut guzar chuka hai saathiyo, 10 bajkar to kuch aakhri shares ho jaye na aaj ke mere hisse ke karyakram mein. My dear son, अपने प्यारे बेटे के लिए पिताजी ने कहता है यारों की try your best, one day you will look back on your life and congratulate yourself, smile and say it was hard, but I did it. नाराज तो ने साथ दिया ना मंजिल ने इंतजार किया, नाराज़ों ने साथ दिया ना मंजिल ने साथ और इंतजार किया. ये जिंदगी के बारे में शेर है यारो. मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरा साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया. Heaven, have luck. Luck is not in your hands, but decisions are in your hands. Your decision can make luck, but luck can never make your decision. So always trust yourself. A special friend is hard to find, hard to lose, and impossible to forget. True friends are never apart, maybe distance, but not by the heart. Agri share, omdat het zo mooi is, nog een keer. 5 rules to win in life. Control your emotions. Don't waste time on people who don't care. Keep your goals private. Wake up with purpose. Never give up, no matter what.

0: बचा था कुछ आखिरी शेर, 10 मिनट रह गया है यारो आप सभी से विदा लेने को, लेकिन उससे पहले ये आखिरी बयान आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एड फिल्म माँ, और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को सुरो का बादशाह रफी साहब जी। हतारी मैं तो शिकारी हूं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर आनंद बख्शी के अल्फाजे।
1: हतारी

Great song, Hatari mei Shikari, uit de film Ma 1976. Gecomponeerd door Lakshmikant Pyarelal, geschreven door Anand Bakshi, Ar Avastha Surakabacha, The King of Melody, Padma Shri Mohammed Rafi Sahib ji ka. 4 मिनट रह गया है साथियों, 11:30 बजने में, तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है। लेकिन जाने से पहले ये 1.5 मिनट का ये आलाप आप सुनिए, शुरू का बादशाह द ग्रेट रफी साहब जी का, जो लोगों को बहुत ही पसंद आया। तो आप तो जानते हैं, अभी मैं कुछ घड़ी बीत चुका है जो मैं आप सभी को ये अति सुंदर बयान 1.5 मिनट लांग एगो आलाप सुनाया था ना, लोगों को बहुत ही पसंद आया। तो एक बार फिर

Dat was alleen de King of Melody, Rafi Saab Ji, Ye Sab Kuch Kar Saka, aur hum logon ke liye sirf yaade chhod gaye. To saathiyon, yahi tak tha aaj ka mere hisse ka karyakram jo samapt hone ko aaya. यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश की आप श्रोताओं को सेवा करने में, यश उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ। सरनामी संगीत लेकर पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो हमें आप सभी इजाजत दे, हमारे बाद आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है महान अनुसर साथी और हम लोग का टीम लीडर मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन टेक ओवर करेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ यारो आप सभी के याद में। और आज मैं चुना हूँ एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है माइकी मुकेश जी का गाया हुआ और द ग्रेट मुका के याद में कोशिश करता हूँ ये सुपर हिट गाना को एक बार ट्राई करता हूँ।

कुल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल, नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1900 का, 1959 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड, फोर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।
1: नजर बचा

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रात।

यारो देखा जाए आपको हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं और ये कौन सा गीत है मूवी का नाम है यानी कि एक मस्त भरी गीत है अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में

तेरी मेरी बीच में कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का ये मूवी एल्बम हैगा, नचिकेता जी का ये सॉन्ग है एक और हो जाए।

और मूवी एक दूजे के लिए फन 1981 का ये सॉन्ग है एक और चलते है यार नहीं कर तक्का अलका यांगनी कुमार शानू उदित नारायण का ये गीत है जो आपको जरूर पसंद होगा।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तो उसका मजा आपको और मिलेगा। कायांगनी कुमार चानू।

और देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, साजन के प्यार देखा है, और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है, और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नैथिकेल लता जी परमाशी मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए, तेरे नीले नीले आंखों की।

और दोस्तों दोस्तों दोस्तों जोंग जोंग जोंग मूवी मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है 1969 रंगत तेरी सूरत से इस एन रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग बाय द गोल्डन वॉइस ऑफ नाइटिंगेल लता मंगेशकर एंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी वाइट हसन जयपुर सॉन्ग द हिट्स। उसके बाद हम चलते हैं मूवी का नाम है वक्त 1965 का एक सुपर हिट सॉन्ग है जो पद्मा श्री रफी जी का यानी कि रफी जी का सॉन्ग है और सुना जाए।

और ऐ मेरी जोहरा ज़बी, तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है, और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है। और उसके बाद हम चलते हैं, आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहाँ आए किस लिए। और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है, हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों, किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है कल आज और कल। 97.1 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम का बताओ।
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।

0: किस लिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों, और ये गीत एक बेमिसाल गीत किशोर दादा आशा जी का, और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है, वो क्या है आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है, क्यों छा जाती है, जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

Marihuana, hua pagel, nog steeds de lovely song, mensen. तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांस पे हम चलते हैं गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी के नाम है खुद गर्ज से पर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरियल कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूं तेरा नाम।

तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जो तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानु राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इज ओल्ड इज गोल्ड, अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

होती पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यार नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ। शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का। ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।